0: फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है कि जो एक्चुअल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपने उनको रिपोर्ट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल किसी ने सोशल मीडिया पर कोई फेक आईडी बना के आपकी कोई पिक्चर या इन्फॉर्मेशन पोस्ट की है, तो आप फेसबुक के ऊपर उनके सेटिंग्स में इंफॉर्मेशन होती है कि आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं अगेंस्ट दैट पोस्ट. तो फर्स्ट स्टेप आपने वो लेना होता है एंड आप फेसबुक को एक्सप्लेन करना होता है कि आप चाह रहे हैं कि वो आइटम या पिक्चर रिमूव हो जाए. सो जब वो रिमूव भी हो जाती है, अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है एंड अगर रिमूव नहीं होती, फॉर एग्जांपल, आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं. आपको कोर्ट के थ्रू आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंजंक्शन कि वो चीज रिमूव की जाए. अब हमने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं कि वो अब मतलब आपको कोर्ट में भी जाके एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि आपको कैसे ये चीज अफेक्ट कर रही है. यू नो, आपकी कोई प्राइवेसी या कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन लीक हुई है जिसको आप स्टॉप करना चाह रहे हैं. समटाइम्स ऐसी इमेजेस भी होती हैं जिससे लोग अपसेट हो जाएं या यू नो मे बी कोई इंसिडेंट हुआ हो एंड किसी ने कोई, जैसे फॉर एग्जांपल एन आर्ग्यूमेंट ऑफ और एन इंसिडेंट ऑफ वायलेंस हुआ हो और किसी ने वो पोस्ट कर दी है, चीजें शेयर की हैं, उसके अगेंस्ट भी आप एक्शन ले सकते हैं.
1: सही. अच्छा रुमाना, एक और बड़ा अहम क्वेश्चन ये आपने जिससे बात की है कि हम पोस्ट डिलीट कर देते हैं तो हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, तो क्या ये ट्रू है, वो चीज़ वहाँ से डिलीट हो जाती है कि नहीं होती?
0: अनफॉर्चुनेटली नहीं होती. आप ऐप पे अगर देखें या कहीं भी किसी ने पोस्ट की हो वहाँ से वो डिलीट चीज हो जाएगी, लेकिन एक्सटर्नली किसी ने कहाँ पे और कहीं पे डाली है, अपने ही सोशल मीडिया अपनी प्राइवेट प्रोफाइल पे डाली है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. इट्स सच अ लाइक इट्स सच अ ट्रेंड के लोग स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, तो अगर किसी ने कोई चीज डाली है जिसके अगेंस्ट आप क्लेम करें कि उसको रिमूव किया जाए, हो सकता है उस प्लेटफॉर्म पे वो रिमूव हो जाए, लेकिन उसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो कहीं और उन्होंने शेयर किए होंगे अपने व्हाट्सएप पे, प्राइवेट, यू नो, प्राइवेट आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं. एंड कितने लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे. अब जैसे कोई वीडियो वायरल हो जाती है, इट्स एवरीवेयर, यू नो, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप,
1: इवन यू डिलीट इट, बट इट्स एवरीवेयर. इट इज ट्रू,
0: इट्स एवरीवेयर. यू कांट कंट्रोल दैट, इवन द कोर्ट्स कैन नॉट कंट्रोल दैट कि हर जगह से आप रिमूव करें.
1: सही. अच्छा हम जो पर्सनल डाटा, अपनी लोकेशन, अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह, ये जब हम अपनी ज़ाहिर एवरीडे सब लोग शेयर करते हैं, तो हमें ये कोई ऐसा टूल नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हमें पता चले कि हमारा डाटा कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, या अगर कोई पर्सनली कलेक्ट कर रहा है तो हमें कोई नोटिफिकेशन आ जाए या कुछ ऐसा? क्या ये जब ये ऐप्स बनाते हैं तो इनमें ये ऐसी चीज़ें क्यों नहीं डालते, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों इसमें ऐड नहीं होता है? आप क्या समझते हैं इसकी ज़रूरत है?
0: हर सॉफ्टवेयर में नहीं होता ये कि आप ट्रैक कर सकें कि कौन सी इंफॉर्मेशन इनको ले रही है, लेकिन किसी भी ऐप में अगर आप देखें उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं, उनमें ये क्लोज होता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इट्स देयर प्रॉपर्टी कि आप उनके ऐप पे डाल रहे हैं, बट दे कांट मिसयूज इट ऑब्वियसली, लेकिन उनके कंट्रोल में होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ चीज डालूँ देन दे कैन कंट्रोल कि अगर मुझसे वो कहे कि ये दिस इज ऑफेंसिव आपको रिमूव करना है. अब एग्जाम्पल आप लें टिकटॉक पे, अगर कोई भी चीज टिकटॉक पे आप डाल रहे हैं, वेदर आपकी प्रोफाइल पब्लिक है या नहीं, टिकटॉक आपको स्टॉप कर सकता है ये चीज डालने से अगर वो आप उनके कंडीशंस ब्रीच कर रहे हैं. इन द सेम वे इट मीन्स के टिकटॉक ऐप जो है वो आपकी वीडियोज और जो भी आप डाल रहे हैं वो रखते हैं उनका रिपोर्ट, उनके पास होता है, दे आर रिव्यूइंग व्हाट यू पुट डाउन एंड दे कैन आस्क यू टू रिमूव इट एंड दे कैन डिलीट इट देयरसेल्फ. सो इसमें आई थिंक डिफरेंट एप्स के डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, तो कोई भी आप यूज करने से पहले आपको उनके रेगुलेशंस डेफिनेट करने चाहिए.
1: अच्छा ये जो बच्चे हैं, आजकल बच्चे भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी ऐप्स हैं जिस पे वो बात भी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ये क्या ये सेफ है और क्या ये यूज होना चाहिए?
0: आई थिंक विद सोशल मीडिया एंड ऐप्स अगर आप बच्चों के हिसाब से अगर देखें, देयर्स टू साइड्स टू इट. एक तो एक पॉजिटिव साइड है कि सोशल मीडिया से आप चीजें सीख सकते हैं, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो सकती है, आप लर्न कर सकते हैं ऑनलाइन, आप रिसर्च कर सकते हैं ऑनलाइन. सो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिला हुआ है कि यू नो, जैसे अगर किसी ने कोई पोस्ट वर्क या कुछ करना है तो उस पर वो रिसर्च करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. पीपल यूज इट, चिल्ड्रन यूज इट इन अ पॉजिटिव वे. लेकिन अगर आप नेगेटिव साइड देखें, social media is being misused by children, you know, and it's affecting them, it's affecting their well-being. Bahut sare incidents humne aise dekhe hain ki bachchon ne misuse kiya hai na unko, like for example grooming ka shikar hote hain, different things, you know. Isme parents should have

0: कंट्रोल के उनके बच्चे क्या यूज कर रहे हैं, किस
1: बिल्कुल
0: एक्सटेंट तक यूज कर रहे हैं।
1: जी, पेरेंटल
0: कुछ कंट्रीज
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी,
0: में
1: जी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे इंशाल्लाह हम इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। टाइम हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया।
2: Discover the Africa of your dreams and surround yourself with her spectacular beauty. Relax beneath her serene sunsets and explore wildlife at its natural best. It's where the pride of Africa comes together. The Kwantu Private Game Reserve. Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit kwantu.co.za. The Kwantu Private Game Reserve, the place of gathering.
3: There are over 200 million orphans globally. We can't help all of them, but what if we each helped just one? The El Imdad Foundation now gives you an opportunity to help just one orphan from Syria or Palestine. For just 500 Rand per month, you can help safeguard the dignity of an orphan by assisting them with basic needs such as food, clothing, shelter, medical care, and attention. Our orphan sponsorship program allows you to track the progress of your orphan through regular feedback. Make a difference in the life of an orphan today. Visit alimdad.com or call 0861 786243 for more information.
4: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Sapphire Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184 or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
5: The following is a paid political advertisement by the Al Jamaa Political Party.
6: Regularization and the alternative political party for South Africa is the Al Jamaa effect. Roads will be fixed, refuse will be removed, and personal safety in your homes, streets, parks, and pathways to the local shops and shopping malls will be our top priority. Al Jamaa aim to regularize shack dwellers by giving them land tenure. Regularize water and electricity supply by making it a reliable source. Vote for good governance, accelerated service delivery, excellence, and the best of breed of councillors, mayors, and mayoral committee members. That is the Al Jamaa effect. South Africa's alternative political party, the Al Jamaa effect.
5: That was a paid political advertisement by the Al Jamaa Political Party.
7: Tonight, a child in a shack will try to sleep through the cold. No heating, no insulation, just thin walls and a biting cold. African Muslims Agency is on the ground, reaching families in informal settlements across South Africa with blankets and winter essentials. Help us spread warmth this winter. For 180 Rand, give a blanket. For 360 Rand, a full winter pack. One gift, one less night in the cold. Africa Muslims Agency. Empowering, educating, inspiring.
3: It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism.
1: Gee, welcome back with mid-morning talk with Mariam Hashmi on Salam Media from Johannesburg. Gee, haan, hum baat kar rahe hain online data control ki, ki kis tarah aap apne data ko control kar sakte hain, apni information ko aap, apni privacy ko aap safe kar sakte hain. Acha, Romana, और कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया. जाहिर सी बात है कि उनकी फिर बच्चों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहे एज अ स्कूल आप स्टोर करते हैं, तो उसमें वालदैन का कितना राइट है, कितना हक है कि वो अपने बच्चों की इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकें कि कितने साल तक उनके बच्चों की इन्फॉर्मेशन उस स्कूल के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड रहेगी.
0: जी डेफिनेटली पेरेंट्स का फुल राइट होता है, स्पेशली एजुकेशन के हिसाब से. पेरेंट्स हैव द राइट के वो स्कूल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कि जैसे आपने कहा कि इंफॉर्मेशन कितनी स्टोर, यू नो कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है बच्चे के बारे में एंड कब तक होगी, बिकॉज ऑनलाइन तो इट कुड बी फॉरएवर. लेकिन पहले जो ये सिस्टम था कि ऑन पेपर आपके रिपोर्ट से आपके जो स्कूल वर्क आपने किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर रहती थी, लेकिन अब ये सब कुछ ऑनलाइन है. इवन होमवर्क भी होता है वो ऑनलाइन एप्स पे होता है, क्लासेस भी ऑनलाइन होती है. सो द पेरेंट्स के पास डेफिनेटली राइट्स होता है कि आप स्कूल से कॉन्टेक्ट करें, उनको अप्रोच करें और इन्फॉर्मेशन लें.
1: सही. अच्छा रुमाना, स्कूल्स में आप क्या समझती हैं उनके करिकुलम में, उनके उसमें ऐड होना चाहिए कि बच्चों को अपनी ऑनलाइन सेफ्टी का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इसकी आप कितनी अहम ज़रूरत महसूस करती हैं?
0: जी इसमें ये जरूर बहुत ज़रूरी है. आई मीन इस पर काफ़ी लोग जो है लेट छोड़ स्कूल के बाद भी इसमें आप इसके ऊपर पूरे कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे साइबर क्राइम के ऊपर भी एक आप एजुकेशन ले सकते हैं. लेकिन आई थिंक इस टाइम इस स्टेज पे स्कूल की एजुकेशन में भी बहुत जरूरी है. स्कूल में सिखाना चाहिए कि अगर आप सोशल मीडिया यूज करें तो उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है एंड सेफ्टी कैसे रखनी है, वो बहुत जरूरी है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एप्स एंड यू नो सोशल मीडिया एप्स, इवन विद गेम्स कम्युनिकेशन एक्सटर्नल लोगों से आप कर सकते हैं. आपको पता होना चाहिए कि आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं.
1: आजकल जैसे गेम्स वगैरह बहुत ज्यादा हैं, तो पेरेंट्स डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इस टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, तो आप जरा उनको एडवाइस करेंगी कि वो किस तरीके से अपने बच्चों के उस गेमिंग डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं, कि वो कहाँ अपनी इंफॉर्मेशन अपनी लोकेशंस वगैरह वो डिफरेंट जगहों पर शेयर करें, क्योंकि कुछ ऐप्स या कुछ गेम्स ऐसी हैं जो आपसे लोकेशन और आपकी इंफॉर्मेशन मांगती हैं, तो क्या उन ऐप्स को या उन गेम्स को अवॉइड करना चाहिए, या अगर कर लें तो फिर उसके लिए क्या सेफ्टी कंसर्न्स होने चाहिए?
0: आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउअडेज कि आप बच्चों को स्टॉप करें, बिकॉज अगर आप किसी भी गेम से या किसी भी ऐप से उनको स्टॉप करेंगे, बच्चे दूसरे बच्चों को देख के दे वांट इट एज वेल, सो उनको भी होगा कि हम भी मतलब ये गेम लें या डाउनलोड करें. बट आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली एप्स की जो सेटिंग्स होती हैं, आपको उनको यूज करने से पहले उनको स्टडी करना चाहिए कि उनकी आप लोकेशन प्राइवेटाइज कैसे कर सकते हैं. अब हर ऐप में जरूरी नहीं कि आपने डेफिनेटली अपनी लोकेशन देनी है, एंड अगर आप नाम भी दे रहे हैं बच्चे का देन वो भी आप चेंज कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू हैव द एक्चुअल नेम. सो आई थिंक जो सेटिंग्स में होता है वो डेफिनेटली पेरेंट्स को प्रॉपरली चेक करना चाहिए, और अगर वो नहीं समझते देन यू कैन गेट आप एडवाइस ले सकते हैं लोगों से, एक्सटर्नल एडवाइस इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि ऐप के ऊपर यू नो एडवाइस करें कि इसको कैसे कंट्रोल करना है. कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको नहीं समझ आती या अंडरस्टैंड नहीं होता कि वो ऐप्स कैसे चलते हैं, बट डेफिनेटली लोकेशन जो है आप यू कैन हाइड इट, आप उसको पब्लिसाइज नहीं करें.
1: राइट. अच्छा रुमाना, बहुत इम्पॉर्टेंट आजकल की इस डिमांड बन चुकी है या ज़रूरत बन चुकी है, चाहे पेरेंट्स की चाहे बच्चों की, एआई टूल्स. मैं किसी टूल का नाम नहीं लूँगी, लेकिन हम एआई टूल्स की बात करते हैं, बहुत एजुकेट भी करते हैं, लेकिन हमारा डाटा जो है वो वहाँ पे स्टोर भी हो रहा है, बच्चों की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपसे डेफिनेटली आप स्टोर करवा रहे हैं या कर रहे हैं, ये कितना ज़रूरी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बनती है, या इन टूल्स पर आप टोटली रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: Yeah, definitely I would not suggest के आप हर टूल के ऊपर रिलाई करें and you can't trust because AI is such a you know large tool के everyone is using it.
1: Everyone, yes.
0: In a positive way or even like if someone's misusing it, you have to be very careful के आप अपने बच्चों की अपनी personal information या photos आप किस तरह उसमें add कर रहे हैं, उसको यूज करने का यही होता है ना कि आप अपनी इंफॉर्मेशन और अपने पिक्चर्स अपलोड करें, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप उनको क्या देना चाह रहे हैं. एंड ये होता है कि लोग फ्यूचर में मिस यूज कर सकते हैं, स्पेशली बच्चों की पिक्चर्स.
1: बिल्कुल. और ये जो AI है डेफिनेटली इसमें इसने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है, बहुत ज़्यादा तरक्की इसने कर ली है, तो इसका जो है इसका सही मेरा ख्याल है नॉलेज होना हर पेरेंट के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन भी और डॉक्टर एडवाइस भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप AI से ही पूछते हैं और इनसे एडवाइस लेते हैं, लेकिन यह है कि फिर भी जो लोग हैं प्रॉपर डॉक्टर्स हैं प्रॉपर टीचर्स हैं जो वो एजुकेशन दे دے سکتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے آن لائن ہم اس طرح کی چیزیں حاصل زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ پریکٹیکل وے سے سیکھنے میں اور آن لائن سیکھنے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. بہت شکریہ رومانہ. کوئی میسج دینا چاہیں آپ ہماری آڈینس کو, ہمارے لسنرس کو, کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی, اپنے بچوں کو بھی, اپنی فیملی کو بھی سیف رکھ سکتے ہیں؟ کوئی ایسا فارمولا بتا دیں کہ بھائی یہ آپ کر لیں اور آئندہ سے اس چیز کا خیال رکھیں.
0: I mean, ایک چھوٹا سی مطلب پیرنٹس یہ اسکرین ٹائم رکھ سکتے ہیں, جس سے لمٹ رکھ سکتے ہیں کہ بچہ کب تک مطلب اسکرین ٹائم یوز کرے. اٹس ناٹ کانسٹنٹلی بچے فون پہ ہوتے ہیں.
1: اور انٹرنیٹ کا بہت بیجا استعمال ہے, جیسے یوٹیوب کا بہت, یوٹیوب کڈز ہے وہ بھی بچے کئی نہیں یوز کرتے کہ یہ بالکل جو ہے ہماری ایج کے مطابق ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ ان کے کانٹینٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان میں جو ہے آپ نظر رکھ سکتے ہیں. لیکن بچے بھی آپ کو, رومانہ ایک یہ چیز بھی بڑی فیل ہوتی ہے کہ بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں رسپیکٹ نہیں کیا جا رہا, ہمارے پہ بہت زیادہ نظر رکھی جا رہی ہے, تو یہ بیلنس بھی کس طرح رکھ سکتے ہیں ہم, یہ بھی ضرور اپنے میسج میں.
0: جانا پڑتا ہے ان کو, دینی ہوتی ہے انفارمیشن کہ اگر کسی ایپ پہ کسی چیز پہ لمٹ, ایج لمٹ ہے تو ان کے فائدے کے لیے,
1: یو
0: نو, سو اٹس ہارڈ ٹو ایکسپلین ٹو چلڈرن, اسپیشلی ینگ ٹین ایجرز, دے مے ناٹ انڈرسٹینڈ, لیکن یو ہیو ٹو ایکسپلین ٹو دیم کہ اس کی یہ بائی لو ہے, یو نو, اٹس ناٹ, یو نو, کچھ ایپس جو ہوتے ہیں انڈر 13 سے آپ نہیں یوز کرتے, لیکن بچے یوز کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوتے ہیں.
1: بالکل,
0: اینڈ پیرنٹس ریسپانسبلٹی, دے نیڈ ٹو, یو نو, ٹیک ریسپانسبلٹی. So my advice would be just have to be really careful with what you allow your children. Lekin there are measures that parents can take. Screen time protect kar sakte hain, apni content jo wo dekh rahe hain wo age limit mein dekha jaye.
1: صحیح, مطلب آپ کا پیرنٹل کنٹرول جو ہے بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. بہت شکریہ رومانہ اتنی خوبصورت نالج کا, اتنی زبردست جو ہے انفارمیشن کا, اور بہت ساری آپ کے لیے دعائیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی کرے اور آپ ہمیں ایسے ہی لیگل ایڈوائس جو ہے وہ دیتی رہیں گے. بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. جی یہ تھی رومانہ ہمارے ساتھ لندن سے, اور جیسے کہ انہوں نے بہت ساری انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی کہ کس طرح ہم انٹرنیٹ کو, کس طرح ہم جو ہے آن لائن چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنی انفارمیشن کو آپ سیف کر سکتے ہیں, اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سیف کریں, اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں, کیونکہ نہ صرف آپ اپنی سیفٹی کا خیال رکھتے ہیں, آپ اپنی فیملی, اپنے بچوں کی سیفٹی کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں. تو پکچرز شیئر کرتے ہوئے ہر چیز ٹرمز اینڈ رولس جو ہے وہ ضرور پڑھیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے, آپ ہی کے لیے بنائے گئے ہیں, اور اگر آپ کو کچھ چیز کنفیوز کرتی ہے آپ اس کو ضرور سیکھیں اور دین آپ کسی چیز کو سائن اپ کریں. میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا جو ہے آج کا یہ ٹاپک رہا ہے, اور امید ہے کہ آپ کو بڑا اچھا لگا ہوگا. اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ آپ ہمیں ضرور دیجیے گا. جی بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں اور ان گیسٹ سے ہم پوچھیں گے کہ جو ہمارا, اب تو بات ہوئی تھی سوشل میڈیا کی, لیکن جو ہمارا ویسے میڈیا ہے, جو ہماری رپورٹنگ میڈیا ہے, جو ہمارا کور کرتا ہے, اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کتنی فیئر رپورٹنگ ہونی چاہیے, اور کتنا جو ہے امپیکٹ کرتا ہے رپورٹنگ کا انسان کی, ان لوگوں کی زندگی میں, کہ آپ کی اگر ایک رپورٹ ذرا سی غلط یا نگیٹو ہو جائے تو اس سے کتنے لوگوں کی زندگیاں متاثر ہو سکتی ہیں, اور اگر پازیٹیو ہو جائے تو کتنے لوگوں کی زندگیاں سنور سکتی ہیں. اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے آفٹر ویری شارٹ بریک, سو ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ٹیون آن سلام میڈیا.
8: ریجوینیٹنگ میڈیا ڈے بائی ڈے. This is Salaam Media.

0: Connect and stay ahead with Salam Media. This is Salam Media, coming to you live from South Africa.
1: Gee, this is Salam Media live from Johannesburg, South Africa. Gee, this is Maryam Hashmi with show named Mid-Morning Talk with Maryam Hashmi. Gee, aaj hum baat kar rahe hain different mauzu pe, different topics hain hamare paas aur bahut achhi guftugu hamare sath jari hai. Hamare sath do guest maujood the. Ab hamare sath hamare aise guest maujood hain jinka taluk direct media se hai. Aur jaise humne break pe jaane se pehle baat ki thi ki media ka kaam sirf khabar pahunchana nahi hai balki sach ko samne lana hai aur logon ko bakhabar rakhna hai. Lekin aapki ek zara غلط رپورٹنگ ایک ذرا سی غلط خبر سے کئی لوگوں کی زندگیاں خراب بھی ہو جاتی ہیں کئی لوگوں کی زندگیاں متاثر ہو جاتی ہیں جبکہ کئی آپ کی ایک اچھی رپورٹنگ سے ایک اچھے امیج سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں تو یہ چیز کا بڑا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ ایک ریسپانسیبل پوزیشن پر ہیں آپ ایک اچھی جگہ پر ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں آپ کی جو ہے خبر کو پہنچانا دوسروں کو آگاہ رکھنا بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں اپنی انفارمیشن لیکن اس کو کریکٹ رکھنا کتنا ضروری ہے اور سم ٹائم جب ان پہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے میڈیا پرسنس پہ ایک پریشر جو ہے وہ بھی بلڈ اپ ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ تو فیئر رپورٹنگ کرنا وہاں پر کتنی ضروری ہے یہ تمام فیکٹرز ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جس کی بڑی اہم ضرورت ہے ہمیں جاننا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں لندن سے جوائن کیا ہے وائس پریزیڈنٹ ہیں پریس کلب لندن کے زین العابدین ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم زین
2: Welcome, Sam. Thank you so much, Maryam. It's really nice seeing you once again. And ایک فاصلے سے دیکھنے کو مل رہا ہے ہم ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کرتے رہے ہیں لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے
1: جزاک اللہ جی زین کے بارے میں بتانا چاہوں زین میری کلیگ ہیں اور بڑی ہماری اچھی گفتگو رہتی ہے بڑے اچھے ٹاپکس جو ہیں ہم کور کرتے ہیں اور ان کی صحافت پہ مجھے بہت زیادہ بھروسہ ہے بڑی اچھی جو ہے ان کی کوریج ہوتی ہے تو اسی سلسلے میں ہم آپ سے بات کریں گے اچھا زین ماشاء اللہ یہ بھی میں ضرور بتا دوں اپنی آڈینس کو بھی اور اپنے لسنرس کو بھی کہ زین جو ہے ابھی وائس پریزیڈنٹ ہوئے ہیں پریس کلب لنڈن کے تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی سب سے پہلے تو آپ کو سوری مبارکباد دینا چاہوں گی کنگریجولیشنز آن یور سلیکشن اینڈ آلسو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پریشر کتنا بڑھ گیا
2: دیکھیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ایک صحافت اور ایک صحافت کے اندر سیاست سو جب ہم صحافت کی بات کرتے ہیں ایز وی آل نو دیٹ اٹس فورتھ پلر آف اے سٹیٹ یعنی تین پلرز جو ہیں آپ جتنے بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں جو کامیاب ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ان کی اگر آپ بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تین جو پلرز ہیں یعنی جو ان کی جوڈیشری ہے جو ان کی لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں جو ان کی ایگزیکٹو ہے یعنی لیجسلیٹو ایک قانون بناتی ہے ایگزیکٹو جو ہے وہ اس پر عمل کرواتی ہے اور جوڈیشری جو ہے وہ جو عمل نہیں کرتا اس کو جزا اور سزا دیتی ہے سو جو چوتھا سب سے بڑا ستون ہے وہ میڈیا بنتا ہے تو جب آپ میڈیا میں آلریڈی ہیں یعنی ایک ستون کو سنبھالے ہوئے ہیں اس سے پیرلل آپ نے پھر ایک سیاست بھی کرنی ہے پالیٹکس بھی کرنی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں بہت سارے ایلیمنٹس کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے بہت سارے دوستیاں ہیں بہت سارے جو چیزیں ہیں بہت سارے معاملات ہیں ان کو بڑا دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے یعنی اب آپ نے جب آپ صحافی ہیں جب آپ صرف پالیٹیشین ہیں تو آپ کی ذمہ داری صرف پالیٹکس ہے تو وہ قدرے آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے آپ کی ایک گراؤنڈ ہے اس میں آپ نے کھیلنا ہے لیکن ونس یو آر اے جرنلسٹ پلس اے پالیٹیشین ان جرنلزم سو دیٹ از اے ڈفرنٹ بال آل ٹوگیدر تو اس میں آپ کو پھر دو تین چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اپنے کولیگز کے ساتھ جو ہے وہ بہت دھیان سے چلنا پڑتا ہے آپ کو ایک ایک چیز اور ظاہر ہے آپ نے مسلسل اسکرین جو ہے وہ فیس کرنی ہے مسلسل اسکرین پہ رہنا ہے تو آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہا ہوگا وہ سنا جا رہا ہوگا اور اس کو بہت لحاظ اور دھیان سے جو ہے اسے بولنا تو یہ ایک پراپر پریکٹس ہے سو دا گڈ تھنگ از کہ آئی ہیو بین پریزیڈنٹ ان مائی یونیورسٹی ایز ویل سو مجھے چار سال کا وہاں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کام آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین جو عمل ہے اس سارے پروسیس میں جو میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ خاموشی یعنی جتنا آپ خاموش رہیں جتنا کم بولیں وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے
1: صحیح اچھا زین یہ بھی ہے کہ آپ ماشاء اللہ دو ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ نے موو کیا ہے اور ان کا ایکسپیرینس بھی آپ کا بہت ڈفرینٹ ہوگا تو آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ وہاں پریشر اپنے کنٹری میں پریشر ہوتا ہے یا انسان تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے اور فورن کنٹری میں کسی پوزیشن پہ کھڑے ہونا کتنی بڑی جو ہے وہ ذمہ داری بن جاتی ہے کتنا بڑا پریشر جو ہے وہ ہو جاتا ہے
2: देखिए मरियम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसमें दो तीन चीजें मैं आपको सबसे मेन चीज बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि जब आप पाकिस्तान में हैं तो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं चीजों में, ठीक है, और डायरेक्टली आप जो है वो पाकिस्तान के मसाइल पर गुफ्तगू करें तो आपको ज्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। और पाकिस्तान में रिलेटिवली लोगों को डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है उसमें हम थोड़ा सा पीछे हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसमें फिर ये है कि हमारी कुव्वत बर्दाश्त भी उस कदर नहीं है। यानी आप किसी सियासतदान को अगर क्रिटिसाइज करेंगे, उसके ऊपर सवाल उठाएंगे, तो वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। आप किसी जो एग्जीक्यूटिव का बंदा है, जो कोई एसी वीसी है, उस पर उसकी कारकर्दगी पर सवाल उठाएंगे, वो आपको हो सकता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। इसी तरह से जुडिशरी में आप ये जो है वो तोहीन अदालत लग सकती है। सो ये जो चीज है, जब आप डायरेक्टली एक मुल्क के अंदर एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो मुख्तलिफ होता है। जब आप किसी दूसरे मुल्क में, अब जैसे आपने तारू में बताया, तो मैं बेसिकली पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन का जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन, इट मीन्स के हमने दो फील्ड्स को देखना है। एक तो ये कि हम लंदन की खबरों को ऑब्वियसली लेंगे, हम यूके के मामलात, यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो मुश्किलात हैं इमिग्रेंट्स की, खासतौर पर पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हम जो यहाँ पे वैसे ओवरऑल यूके के मसाइल हैं, उन पर भी जो है वो बात करते हैं। तो मामला ये है कि यहाँ पर थोड़ा सेफ आप इसलिए हो जाते हैं कि ये शायद पाकिस्तानियों के मामलात में उतना जो है वो इंडल्ज नहीं करते खुद को, और ये इतना फिक्रमंद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में आपके लिए मुश्किल इसलिए हो जाती है कि आप जब भी यहाँ बैठे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कदरे ज्यादा दलेर हो जाते हैं, और यहाँ पे जो बहुत सारे यूट्यूबर्स और वो जो हैं वो पाकिस्तान में हर किस्म की बात, पाकिस्तान के हर मामले पर खुलम खुला बात करते
1: हैं।
2: ये चीजें पाकिस्तान
1: एहतियात कर दी चाहिए, एहतियात कीजिए। अच्छा, सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, जब भी हम ओपन करते हैं एज अ नॉर्मल व्यूअर, आप देखते हैं तो उसमें हर शख्स जो है वो अपनी राय को एज अ न्यूज़ प्रेजेंट कर रहा है। तो आप जैसे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या इस पर कंट्रोल होना चाहिए, कि आपकी न्यूज़ वेरीफाइड होनी चाहिए, थ्रू वेरीफाइड चैनल आनी चाहिए, कि हर शख्स जो है वो अपनी ओपिनियन दे रहा है और उसकी व्यूज़ की खातिर न्यूज़ जो है वो बनती जा रही है, तो वहाँ पर फिर जर्नलिस्ट का क्या किरदार है, या आपकी जैसे प्रेस क्लब लंदन है उसमें आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है?
2: देखिए मरियम, दो चीजें इसमें मेरे ख्याल में दोनों तरफ की जिम्मेदारी आती है, व्यूअर की भी और जो एनालिस्ट है उसकी भी। यानी एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट चीज है, न्यूज बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अब न्यूज ये है कि मैं ये कहूं कि जो है वो गली के अंदर एक खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ है और उसमें दो शख्स जान बहक हो गए, ये तो होगी खबर और ये वेरीफाइबल है। यानी आप मुख्तलिफ इदारों के पास जाते हैं, आप उनसे पूछते हैं किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग जो है वो जान से गए, ये सारी चीज होगी। अब इसमें अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि ये लोग यहाँ से आ रहे थे, यहाँ पर इनको ये मामला आया, ये ज़हनी स्ट्रेस में थे, ये वाली कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अगर बंदा मर गया है तो वो अपने साथ ही लेके चला गया ये कहानी। तो ये जो एनालिसिस है, ये जो है, ये इसमें क्या सराई भी हो सकती है, इसमें अपने आप से भी एडिशन हो सकती है। लेकिन जो बेसिक न्यूज है, बेसिक न्यूज हमेशा वही रहेगी कि ये एक्सीडेंट हुआ है और इसमें दो लोग जो हैं वो जांबक हुए। सो जो एक्स्ट्रा एड ऑन चीजें होती हैं, उसमें अब आपकी जिम्मेदारी बतौर व्यूअर ये बनती है कि आप उसको खुद वेरीफाई करें। और उसमें ये होता है कि आप देखें, अब मामला ये है कि हम ये समझते हैं शायद कि अगर कोई भी शख्स गली में खड़ा होकर वो हमें खबर दे रहा है तो इट मींस के हमने उसको क्या बनवान उस पर यकीन करना है, तो मेरे ख्याल में ऐसे नहीं है। उसमें ये है कि इतने बड़े बड़े इदारे हैं, अब आप देखें एक खबर बीबीसी दे रहा हो और एक जो है वो गली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दे रहा होगा, तो आप किसको बिलीव करेंगे? आप क्रेडिबिलिटी को यकीन करेंगे। जो क्रेडिबिलिटी होती है ना, वो चीज है सबसे मेन चीज। यानी जो बड़े इदारे हैं जिनके हर शहर में नुमाइंदे हैं, हर मुल्क में नुमाइंदे हैं, वो बेसिकली क्रेडिबिलिटी के सर पे चल रहे होते हैं। सो इसी तरह से जो है ये सारी मामलात, कोई भी खबर, अब आप एक खबर है, फॉर एग्जांपल कराची में मैं एक खबर देता हूँ जी, के कराची की एक बस में एक हमला हुआ जिसमें एक शख्स ने दो लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। अब ये एक खबर है, ये सिंपली खबर है। अब इसको मैं अगर ट्विस्ट करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि कराची में एक मुहाजिर ने दो पंजाबियों पे हमला कर दिया। अब ये जो खबर है ये टोटली जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस चेंज कर देगी।
1: Exactly.
2: और टोटली जो है वो उसके जो मामलात हैं वो एक लड़ाई की तरफ चले जाएंगे। और अगर लंदन के प्रस्पेक्टिव से देखें तो आप जो है वो नाइजल फराज के ट्वीट पढ़ लें, जिया यूसुफ के ट्वीट पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि एक खबर को किस तरह से ट्विस्ट किया जाता है। यानी वो जो कोई फिगर होता है, कोई फैक्ट होता है, उसको किस तरह से जो है वो अपनी फेवर में यूज करने के लिए उसको फैब्रिकेट करते
1: हैं। बिल्कुल, और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हमें यूज करने चाहिए ताकि हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके और हमें वेरीफाइड जो है वो न्यूज़ जो हमारे तक पहुंच सके। अच्छा जैन, सोशल मीडिया की जैसे हम बात करते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है। जैसे कि हम प्रीवियस दौर की बात करते हैं, एक दो चैनल्स थे उनसे हमें जितनी इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर सकते थे हम करते हैं। आजकल जो है हर न्यूज़ हमारे हाथ में है, अपग्रेडेड अपडेटेड हर चीज़ हमारे हाथ में मौजूद है। आप क्या समझते हैं, क्या ये जर्नलिज्म के लिए थोड़ा खतरा बन गया है या इसके बेनिफिट्स ज्यादा है?
2: नहीं, मैं ये समझता हूँ कि दोनों चीजें हैं। इसका फायदा भी ले सकते हैं, इसका नुकसान भी हो सकता है। नुकसान इस सेंस में है कि जब आप क्रॉस चेक नहीं करते, एक जर्नलिस्टिक एथिक्स में आता है कि आप कोई भी चीज है तो उसको आप मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म करें। अब देखें, हो सकता है कि आपका जो सोर्स है वो भी तो बाइस्ड हो सकता है। यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल पीटीआई की खबर ले रहे हैं, नून लीग की खबर ले रहे हैं, तो अगर आप पीटीआई की खबर पीटीआई के शख्स से लेंगे तो आपको उसमें वो अपना जो एलिमेंट है उसका, जो उसकी एक बायसनेस है, वो तो कहीं ना कहीं आएगी, वो आप चाहें या ना चाहें। उसके अलावा अगर आप नून लीग के बंदे से खबर लेंगे तो वो एक बायसनेस तो आएगी। तो बतौर जर्नलिस्ट ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने कौन सी चीज रखनी है, कौन सी चीज नहीं रखनी, और फिर मल्टीपल सोर्सेज से सेम खबर को आपने कंफर्म करना। यानी अब एक जलसा होता है लाहौर के ग्राउंड में, और वो आप फॉर एग्जांपल जमात इस्लामी का एक जलसा होता है, तो वो अब जो पीटीआई का शख्स है उसको वो 1000 का जलसा लगेगा, जो नून लीग का है उसको 2000 का लगेगा, जो जमात इस्लामी का उसको 1 लाख की गैदरिंग लगेगी, और जो आजाद सोर्सेज हैं वो शायद आपको कोई एक मुनासिब फिगर 8-10 हजार का बता दें। सो होता ये है कि आपने ये चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम विद ट्रेनिंग वो आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। जब आप आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रेनिंग के थ्रू गुजरते हैं और जब आप पढ़ते हैं मीडिया को, बेसिकली अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में देखें, मैं भी अकाउंट बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं। कोई जो शख्स जिसको मीडिया एथिक्स का नहीं आइडिया, जिसने मीडिया एथिक्स नहीं पढ़ी, वो भी जो है वो बना सकता है। तो होगा ये कि जब मैं और आप वीडियो बनाएंगे तो हम बहुत सारी चीजों के, बहुत सारे मॉरल्स एथिक्स का लिहाज रखेंगे, लेकिन जो शख्स जिसको इस चीज का आइडिया नहीं है वो बिल्कुल डिफरेंट। सो अब जो व्यूअर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि इन तीन लोगों ने जो वीडियो बनाई है इनमें से मीडिया को कौन जानता है, एथिक्स का कौन ख्याल रखता है। सो ये अब उस पर जिम्मेदारी बनती है। सो मेरे ख्याल में इसमें बहुत सी चीजें जो है, अब क्योंकि AI भी आ गया तो बहुत मुश्किल होगी, खासतौर पर उन लोगों के लिए असल खबर ढूंढना बहुत मुश्किल होगी है जो इन चीजों से अभी वाकिफ नहीं है, जिनको इस चीज की वाकफियत नहीं है। यानी उनको यही आइडिया नहीं होता कि AI बेस्ड वीडियो कौन सी है और जो नॉर्मल ओरिजिनल वीडियो है वो कौन सी है। तो ये एक व्यूअर और जो खबर देने वाला, उन दोनों की बाहमी ट्रेनिंग की मेरे ख्याल में जरूरत है।
1: सही। अच्छा, और जो हमारी यूथ है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है न्यूज़ से और अपनी रिपोर्टिंग वगैरह जो वो करते हैं, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे जैन कि किस तरह वो रिपोर्टिंग करें अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं? प्रॉपर एजुकेशन लेना कितना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन और आप सिर्फ एक न्यूज़ दे दें, इस पर ज़रा रोशनी डालें।
2: देखें, अगर एज लॉन्ग एज सोशल मीडिया की अगर आप बात करें तो सोशल मीडिया पे तो क्योंकि किसी किस्म के कोई चेक्स नहीं है प्रॉपर, तो जब आप ये जिंदगी में ये मकसद बनाते हैं कि मैंने सोशल मीडिया पे काम करना है, तो फिर तो आप ऑब्वियसली देखेंगे कि सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनको सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, जिनके सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, तो आप उनको फॉलो करना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपने प्रॉपर ऑथेंटिक और जर्नलिज्म में आना है और जर्नलिस्टिक एथिक्स को मलहूजे खाते रखते हुए, यानी उनको अपने जहन में रखते हुए फिर आपने काम करना है, जब आप कोई बड़ा नाम जर्नलिज्म में बनना चाहें, तो फिर आपको ऑब्वियसली ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना होगा। अब ट्रेनिंग देखें, हम अब ये भी कह सकते हैं कि जो सबसे पहले जर्नलिस्ट थे क्या वो ट्रेनिंग लेते थे, उन्होंने भी तो खुद ऐसी चीजें की। होता ये है कि हम बहुत सारे तजुर्बात जो हैं वो खुद जिंदगी में करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम दूसरों के तजुर्बात से सीख सकते हैं। इंस्टेड कि मैं एक गलती जो है वो खुद करूं, तो हो सकता है कि जो मेरा सीनियर है उसने पहली वो गलती की है और उसने उसको बेहतर करके मुझे दिखा दिया कि ये वाली गलती मत दोहराना। सो द बेटर वे इज मेरे ख्याल में कि जो सीनियर्स हैं आपके, जो सीनियर जिन्होंने पहले काम किया है आपको, मतलब हो सकता है उनकी भी बायसनेस हो, उनके भी बहुत सारे जो है वो अपने मामलात हों, लेकिन आपने 3-4-5 आप मल्टीपल लोगों को देखें जिनको आप आइडियलाइज करते हैं, जिनको आप बेहतरीन समझते हैं, किसी एक शख्स पर स्ट्रिक्ट ना हो। यानी अगर मुझे किसी एक बंदे का स्टाइल पसंद है और मैं उस पर स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, तो मेरे ख्याल में फिर मेरे अंदर उसका अक्स नजर आना शुरू हो जाएगा। तो एक तरह का आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे शाहजेब खान ज्यादा पसंद है और मैं बिल्कुल उनको कॉपी करना शुरू हो जाऊंगा, तो फिर होगा ये कि लोग शाहजेब खान ज्यादा कोई सुनेंगे, मुझे नहीं सुनेंगे। उसके पीछे वजह यह है कि उनके पास एक कॉपी और एक ओरिजिनल मौजूद है।
1: नहीं, बिल्कुल, आपका अपना अपना एक स्टाइल होना चाहिए, आपकी अपनी एक बात होनी चाहिए, आप अपनी एक राय रख सकते हैं। अल्लाह सुबहाना व ताला ने हर इंसान को ये तौफीक दी है, ये हिम्मत दी है कि आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और माशाल्लाह हम जिन कंट्रीज में हैं वहाँ पर आप अपनी बात को जो है वो दुनिया तक पहुँचा सकते हैं, बट इन अ राइट वे। इट्स टाइम फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक, विल जस्ट कम बैक आफ्टर दिस ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया।
0: Connect and stay ahead with Salaam Media. This is Salaam Media coming to you live from South Africa.
3: Shimmer, sparkle, captivate. Nothing less than a masterpiece. Droplets of gold inspires precious design. Platinum bursts with intricate freshness, and every pure diamond becomes more than just a girl's best friend. Voda Gold Gem Jewelers. Where timeless dreams become a reality. Come to us. We tailor-make designer gold, platinum, and diamond jewelry. Trade in or remodel your old gold. Clad yourself with classy name-branded watches. We offer insurance valuation and Visa card calculation. Visit us at 534 Ridge Road, Overport, or call 031-208-9142. Voda Gold Gem Jewelers, manufacturers of fine gold and diamond jewelry.
4: Mmm, Dad, these Frimax chips are so tasty.
5: Wow, that really takes me back. My dad bought me a Frimax chips every day after school. They were my favorite when I was your age as well. Quality is at the very heart of what we do, and that's why we ensure that every Frimax packet is filled with the beautiful goodness and flavor-packed taste that you've come to expect from us since 1982. Frimax, from generation to generation.
6: You South African, of course. You anxious about the future. We've got you covered. Build on your wealth portfolio with Randri Jewelers Gold Coin Exchange. Visit us at 151 Stephen Dlamini Road, Musgrave, Durban, or call us on 031-202-4700 for more information. Randri Jewelers Gold Coin Exchange, your passport to gold investment.
7: Africa. Give the gift of clean water with Africa Muslims Agency. With every water well or borehole you donate, your drop becomes a river, reconnecting communities to nourishment, education, dignity, and empowerment. Sponsor a water well for 17,000 Rand in Africa, or a borehole for 65,000 Rand in Afghanistan or Africa. Quench the thirst, reconnect the soul with Africa Muslims Agency.
8: Are you banking with convenience, transparency, and flexibility? With Al Baraka Bank's transactional banking account, you can enjoy convenient everyday banking designed around your needs. Benefit from zero fees on point-of-sale transactions and manage your banking easily through Al Baraka's secure mobile banking app and internet banking platform. From everyday payments to managing your personal or business banking, Al Baraka makes banking simple, transparent, and convenient. Visit albaraka.co.za to learn more. Al Baraka, your partner bank. Al Baraka Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
0: It's a new beginning. It's a new era. Salaam Media. Humanitarian journalism.
1: जी, वेलकम बैक, मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी। जी हाँ, बात हो रही है मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब लंदन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। माशाल्लाह आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं, आप एक लीडरशिप पोजीशन पर हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ट्रस्ट बिल्ड करना, लोगों का ट्रस्ट लेना, उसके लिए क्या एफर्ट ज़रूरी है, क्या करनी चाहिए, और एज अ लीडर जो है आप किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं?
2: मेरा ख्याल है कि ट्रस्ट के लिए सबसे मेन चीज ये है कि उस शख्स से बात की जाए। अब और दूसरा ये है कि ट्रस्ट जो है वो मेरे ख्याल में बाहमी अमल है, उसमें आप अकेले का किरदार नहीं हो सकता, दूसरे शख्स की एफर्ट भी बहुत जरूरी है। जैसे अब मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ हजरत अली तआला अन्हु के बारे में कि उनके पास एक शख्स आता है और वो ये कहता है कि मेरा एक बाजू कट गया और मेरे पे जुल्म हुआ है। अब वो बाजू जाहिर है उसका कटा होता है, वो आता है तो मेरे पे जुल्म हुआ। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो फैसला नहीं करते, वो कहते हैं मैं पहले दूसरे शख्स को देखूंगा, हो सकता है तुम उसके दोनों बाजू काट के आए। अब बात यह है कि हम जब एक शख्स की बात सुनकर फाइनल फैसला दे देते हैं तो तब मामला खराब होते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन जो तरीका है, जो सबसे बेहतरीन अमल है, वो यही है कि जब भी कोई भी आपके पास मामला आए तो जो बंदा आपको कहानी सुना रहा है, जैसे हमने पहले बात की क्रॉस वेरिफिकेशन की, एक तो क्रॉस वेरीफाई करें, और दूसरा ये कि आप उस शख्स की कोई बायसनेस हो सकती है। जब वो अपने बारे में कोई भी शख्स बताता है तो वो हमेशा अपने आप को हीरो और दूसरे को विलन पेश करता है। आपने कई जितनी भी कहानी पढ़ी होंगी उसमें बड़ा रेयर होगा कि जो कहानी लिखने वाला है वो खुद को विलन की जगह पर रख रहा हो, वो हमेशा खुद को हीरो की जगह पर रखता है। सो आपको जब आप इस तरह के एनालिसिस करना शुरू हो जाएंगे, कोई भी शख्स किसी के बारे में भी कोई खबर लेके आता है, तो मेरे ख्याल में बतौर साफी ये हमारे लिए मजीद आसान है कि कोई भी आपको किसी के बारे में बात बताता है तो आप फौरन फैसला ना करें और फौरन उसके सामने ही उसको फैसला ना सुना दें कि वो तो पहले भी ये और ये। इससे इसके बरक्स मेरे ख्याल में ट्रस्ट बिल्ड तब होगा जब विद द पैसेज ऑफ टाइम दो तीन दफा आपके साथ कोई इस तरह की बात करेगा, जब उसको पता होगा कि आप आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे या आप इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे कि आप दूसरे बंदे को भी पैरेलल साथ बिठा लेंगे, तो जो जो नफ्सियात है अगले शख्स की वो भी काम करना शुरू हो जाएगी कि अगर मैं इस तरह से करूंगा या कोई दरमियान में मामला खराब करने की कोशिश करूंगा तो मेरे ऊपर ये सारी बात आएगी। सो ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे बेहतरीन जरिया यही है कि आप दोनों साइड ऑफ द स्टोरी को सुने और फिर फैसला करें, और जो कोई किसी के बारे में आपको आके कोई भी खबर दे रहा है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करें। आप जाहिर है बहुत सारे इमोशंस होते हैं आपके अंदर और बहुत सारे मामलात होते हैं, बाज दफा आपकी किसी के साथ बहुत अच्छे मामलात नहीं चल रहे होते। सो ये यानी फ्लो ऑफ लाइफ है, ये ऐसे ही चलता है कि बाज दफा आपके बहुत अच्छे दोस्त आपके मतलब
1: अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन यह कि लीडरशिप इसी को कहते हैं कि आपने अगर लीडरशिप करनी है तो आप में ये क्वालिटीज भी होने चाहिए कि आप हर चीज़ को, हर इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सके और अच्छे ठंडे दिमाग से जो है वो फैसला कर सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाहिर है ये पोजीशन लेना आसान नहीं है और इसकी जिम्मेदारियाँ भी उससे ज़्यादा। अच्छा जैन, आपने माशाल्लाह बहुत काम किया है, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप इस पोजीशन पर हैं तो लंदन में जो मीडिया के मुस्तकबिल के लिए अगर कोई अहम तब्दीली आपको लाने का मौका मिले तो वो मेन चेंज क्या होगा जो आप करना चाहते हैं?
2: To be very fair, अगर मुझे कोई शख्स ये जिम्मेदारी दे तो मैं professional training पे काम करना चाहूंगा। उसके पीछे वजह ये है कि देखें हम, because हमने दो जगह को कवर करना होता है, यानी हमने लंदन के मामलात को भी देखना है और पाकिस्तान के भी मामलात को देखना है, खास तौर पर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा यहाँ पर है उनकी खबर को देखना है। सो मामला ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, वो उस प्रॉपर ट्रेनिंग से गुजर के नहीं आए होते। सो जब वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ गुजर के नहीं आए होते तो उनको चीजें समझाना, उनको चीजें बताना वो उतना आसान नहीं रहता। और दूसरा ये है कि यहाँ पर मीडिया जो है वो फर्स्ट जॉब नहीं है बहुत सारे लोगों की, यानी जब आप बतौर साफी काम करें तो ये आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बल्कि ये आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ जो है वो जो आपका लव फॉर मीडिया है या लव फॉर स्क्रीन है उसकी वजह से आप कर रहे होते हैं। So, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपने पैरेलल दो चीजें लेके, आप पाकिस्तान में कोई अगर प्रोग्राम होस्ट है तो ही और शी डजंट नीड टू डू एनी अदर वर्क फॉर देयर लिविंग, तो यहाँ पर यह है कि आपको पैरेलल कोई चीजें वो भी करनी पड़ती हैं, यानी आपका जो दाल रोटी है वो कहते हैं ना छान मारे हैं फलसफे सारे दाल रोटी सब पे भारी, तो दाल रोटी जब तक आपने आपकी वो पूरी नहीं होती तो आपको बाकी सारे काम जो है वो पसे पुष्ट आ जाते हैं। सो अब मामला ये है कि यहाँ पर आपने ये चीज कैसे पैरेलल लेके चलनी है कि आपके जो पर्सनल मामलात हैं, आपका जो रोजगार है वो, और जो आपकी साफ़त, जो आपका पैशन है वो कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, तो ये बड़ी मुश्किल चीज है। इस पर जो ट्रेनिंग्स हैं इसको किस तरह से मतलब पैरेलली दोनों चीजों को लेके चला जा सकता है, इस पर मेरे ख्याल में काम करने की जरूरत है और इस पर मैं जरूर कोशिश करूंगा, या मेरी ख्वाहिश है कि इस पर काम जो है वो करना चाहिए।
1: जबरदस्त। अच्छा जैन, एक और बात है कि आजकल माशाल्लाह एआई का, जैसे आपने बताया कि दौर है और एआई है, मिस इन्फॉर्मेशन है और ऑनलाइन प्रेशर है, ये तमाम जो चीज़ें हैं इनका बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है आजकल जर्नलिस्ट को, तो एज अ लीडर मैं पूछना चाहूँगी कि जो कम्युनिटी के जो जर्नलिस्ट हैं तो उनके लिए, उनको इन चैलेंजेस के लिए आप किस तरह तैयार करना चाहेंगे, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे?
2: देखिए मेरा ख्याल ये है कि आप अपने जो आपका जहन है, एक अगर आप पीछे देखें तो थ्रू आउट जितने भी लोग हैं वो बगैर एआई के, बगैर चैट जीपीटी के, उन्होंने जिंदगी गुजारी है और बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजारी, बेहतरीन साहब
1: जी।
2: तो मामला जो है, तो मेरा ख्याल ये है कि आप एआई से, अगर मैं भी एआई से पूछ रहा हूँ, आप भी एआई से पूछ रही हैं, जो चार साफी और हैं वो भी एआई से पूछ रहे हैं, तो ओरिजिनलिटी मर जाएगी। यानी एक ओरिजिनलिटी होनी चाहिए हर शख्स की। एक जो है वो खुदा ताला ने ये एक सलाहियत दी है, हर शख्स के अंदर एक खूबी रखी है कि वो दूसरे से डिफरेंट है। वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ज्यादा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो दूसरे से डिफरेंट है। और हर, अब यही प्रोग्राम आप कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर चार पांच छह और साफी होंगे वो कंडक्ट करते हैं, या मैं अपना प्रोग्राम कंडक्ट करता हूँ, हर शख्स का अपना एक अंदाज है, अपना जो है वो तर्ज है चीजें करने का। सो जब आप सारे एक चीज पे रिलाय करेंगे तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो मिक्स एंड मैच होना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक ही तर्ज की चीजें जो है वो मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी। अभी नहीं, क्योंकि अभी ये नया है और जो है वो लोग उसको उस तरह से, बहुत सारे लोग उस तरह से नहीं जानते, कुछ बेहतर जानते हैं, कुछ कम जानते हैं। तो अगर इसी तरह से रहा और सारी की सारी चीजें जो है हमने एआई पे डाल दी, तो मेरे ख्याल में ओरिजिनलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो वो अगर खत्म हो जाती है तो फिर मेरे ख्याल में जो एक खूबसूरती है, यानी एक आठ घंटे की जो ट्रांसमिशन होती है उसमें हर शख्स जो है वो अपनी अपनी मर्जी से एक एक जो घंटे की स्लॉट है उसको पसंद कर रहा होता है। कोई जो है वो मॉर्निंग को, मॉर्निंग टाइम के शो को, कोई जो है वो इवनिंग टाइम के शो को, कोई जो है वो मिड डे के शो को। सो होगा ये कि अगर उसको एक ही तरह की चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सबकी ओरिजिनलिटी इफेक्ट होगी। तो मेरे ख्याल में अगर हमने इस ओरिजिनलिटी को कायम रखना है, अगर हमने अपने आप को, अपनी जात को कहीं ना कहीं प्रेजेंटेबल बनाना है, तो उसके लिए हमें फिर अपने आप पे भी रिलाय करना पड़ेगा। और एक चीज जो बड़ी बेसिक हमें याद रखनी है वो ये रखनी है कि एआई को हमने बनाया है, हमें एआई ने नहीं बनाया। सो इतना हमने उस पर रिलाय नहीं करना कि वो ही हमें जो है वो आगे मूव फॉरवर्ड करे। हम कोई भी चीज, अब होता ये है कि हमने किसी से टेक्स्ट मैसेज भी करना तो वो भी हम उसको बोल के बता रहे होते हैं कि ये भेज दो मुझे, ये इसकी बर्थडे आ गई, तो ये तो आपके अपने इमोशंस कहाँ
1: हैं।
2: एआई को तो नहीं पता कि आपका किसी अपने बहन भाई से किस कदर मोहब्बत का रिश्ता है, क्या मामला है उसका, उसके साथ। तो वो तो आपको बड़ी अच्छी अंग्रेजी में या बड़ी अच्छी उर्दू में, रीस उर्दू में लिखे तो दे देगा, लेकिन मामला ये है कि जो आपके अपने जज्बात हैं, जो आपने उनके साथ बचपन गुजारा है, जो आपने उनके साथ मुश्किलात गुजारी हैं, जो आपने उनके साथ टेंशन शेयर की हैं, वो एआई ने तो नहीं की। सो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि ठीक है, जरूरत के टाइम आप जरूर यूज करें और ऑब्वियसली यूज करनी चाहिए, लेकिन उसको इतना हम अपनी डेली लाइफ में ना ले आए कि हमें जो है वो सलाम का जवाब देने के लिए भी जो है वो एआई की जरूरत पड़े और सलाम मीडिया पर अस्सलाम वालेकुम कहने के लिए एआई हमें
1: जरूरत पड़े। ये बहुत बेहतरीन है कि अपनी जिंदगी में अपने इमोशंस जो हैं वो आप जरूर उनको खत्म मत कीजिए। आप, हम जिस दौर से आए हैं या जिस, जहां हमने क्वालिफिकेशन हमारी है जहां की, वहां पर मकसद हमारा यही था कि हम अपनी एबिलिटीज को लेकर आए, अपने स्किल्स को जो है वो काम में लाए, ना कि ये कि हम हर चीज जो है वो टूल्स पे जो है वो रिलाई करना शुरू कर दें। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है जैन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि देखें, आप एक कामयाब माशाल्लाह सहाफ़ी भी हैं, कामयाब एक लीडर भी हैं, एक तो ये कि आप हमारी जो है आवाम है, जो नए लोग हैं उनको किस तरह से कोई मैसेज आप देना चाहें, उनको किस तरह से आप इस फील्ड के लिए पॉजिटिव वे में ला सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड के बारे में यही कहा जाता है कि जब भी रिपोर्टिंग की जाती है, एक जिम्मेदार सहाफ़ी की जिम्मेदारी डेफिनेटली ये है कि अगर वो रिपोर्टिंग करे या बात करे तो कम अज़ कम उसका कोई एक डिग्निटी को मेनटेन रखे, लेकिन जब भी हम बात करते हैं नेगेटिव व्यूज़, तो इससे चाहे वो कोई कम्युनिटी अफेक्ट हो, चाहे कोई कंट्री अफेक्ट हो, दे डोंट केयर। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल जो है वो कैसे रख सकते हैं, और नई जनरेशन जो है वो अगर इस फील्ड में आना चाहे तो कामयाब और ज़िम्मेदार सहाफ़त कैसी होनी चाहिए?
2: देखें मरियम, टू बी वेरी फेयर, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे यहाँ एक स्टीरियोटाइप है या एक मिथ है या एक गलत बात जो पोर्ट्रे की जाती है वो ये की जाती है कि हम कहते हैं कि जो सच्चा शख्स होता है वो कड़वा होता है। तो मैं इस चीज को बिलीव नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि आपको सच्चा होने के लिए कड़वा होने की जरूरत हरगिज नहीं है। आप अपने रिश्ते बचाएं, अपने रिश्ते मजीद बनाएं, और जो एक फ्रेज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, तो आपके जो दोस्त हैं, जो आपके अहलो अयाल हैं, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर आप उनमें पसंदीदा नहीं हैं तो आप दूसरे लोगों के लिए जितने भी पसंदीदा हों उसका आपको फायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो भी आपके पीआर है, जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनको सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखें और उनको खुश रखें। तो आपने अगर कोई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने अगर कोई खबर देनी है तो आप उसको रिलैक्स मोड में भी दे सकते हैं, आप उसको सॉफ्ट लैंग्वेज में भी, सॉफ्ट स्किल्स यूज करते हुए भी दे सकते हैं, और वही चीज जो है वो आप थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला डाल के आप बहुत सारे लोगों के दरमियान नफरत की वजह बन सकते हैं.
1: Exactly.
2: तो आपकी खबर, आपका कंटेंट वो हमेशा मोहब्बत का बायस बनना चाहिए, नफरत करें.
1: बिल्कुल, ताकि मीडिया जो है, जो फील्ड है, उसको लोग पॉजिटिव वे में देखें, उसके बारे में लोग ये नेगेटिव कमेंट्स ना दें या नेगेटिव इम्पैक्ट उनके माइंड में ना आए कि मीडिया तो हमेशा हमें डिप्रेशन ही देता है, टेंशन ही देता है, यहाँ खबरें ऐसी आती हैं. जब आप खबरें दें, आप न्यूज़ करें, तो आप उसके साथ उसका सोल्यूशन भी जो ज़रूर दें और एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो तमाम दुनिया को दें. बहुत शुक्रिया जैन आपकी इस खूबसूरत और ज़बरदस्त डिस्कशन का, और उम्मीद है हमारी बहुत सारी वेल विशेज आपके साथ हैं, और अल्लाह सुबहाना व ताला आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दें और आप इसी तरह चमकते और जगमगाते रहें. जज़ाकअल्लाह, थैंक यू जी. जी ये थे जैन हमारे साथ लंदन से, और उन्होंने बात की कि किस तरह हम मीडिया की जिम्मेदारी जो है वो उठाते हैं, तो उसको फिर किस तरह हमने आगे बढ़ाना है, उस जिम्मेदारी को कितनी जिम्मेदारी के साथ हमने उसमें काम करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप ज़रूर, अगर आपका ये पैशन है या आपका ये शौक़ है, तो आप प्लीज़ इसके बारे में सारे जो है टर्म्स एंड कंडीशंस को जहन में रख के उसको पढ़ कर और आप इन चीज़ों को आगे लेकर चलें, ताकि आप मुस्तकबिल में लोगों के लिए राय हिदायत बन सकें. और ये जो है इम्पैक्ट, ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कि ये मीडिया जो है इससे हमें जो है यही खबरें मिलती हैं और इनसे हमें कोई सलूशन नहीं मिलता, क्योंकि सलूशंस के बगैर जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल हो जाती है. तो ये हमारा आज का सेगमेंट था. नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं, उसमें आप देखिएगा कि हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन है. जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और जिन लोगों को पब्लिकेशंस का मसला है, जिन लोगों को रिसर्च आर्टिकल्स का मसला है, तो उनसे हम एडवाइस लेंगे अपनी एक गेस्ट से कि किस तरह उस मसले को हल किया जा सकता है, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारी पब्लिकेशंस जो हैं वो बहुत आसान हो जाएं और हमारे लिए रिसर्च प्रोसेस स्ट्रेस जो है डिप्रेशन की जगह हमारे लिए जो है वो बेहतरीन और एक खुशी का बायस बन सके. तो उनसे हम बात करेंगे, इस छोटी सी गुफ्तगू करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद. तो हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया.
0: Connect and stay ahead with Salaam Media. This is Salaam Media coming to you live from South Africa.
9: At this time of trial and worry, the blessings of charity are the ideal means to avoid calamity and despair. The Al Imdad Foundation gives you the opportunity to sponsor a share in a borehole in South Africa for just 1,000 rand and provide what the Holy Prophet, peace be upon him, called the best form of charity. Donate online at alimdad.com or call 0861 786 243 for more information.
10: You know, it's a wonder how kids get anything done these days. With all the distractions, when do they even get time to study? As a mother, all I can really do is make sure they have all they need to perform at their best. That's why I choose to include Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil with every meal I make. Naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether I'm cooking, frying or baking, I know every dish will be a wholesome one. Sunfoil. Now we're cooking.
11: Right now, over 150 million children around the world are orphaned, facing hunger, hardship, and uncertainty. With Islamic Relief's Orphan Sponsorship Program, you can provide a child with access to education, nutritious food, essential healthcare, and a safe home. Your sponsorship is not just support, it's hope, security, and a brighter future. Be the reason an orphaned child smiles again. Sponsor an orphan today with Islamic Relief.
12: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine, and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people, and tourists, with its four-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach and other amenities, your stay will be truly unforgettable, as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415 or visit www.albaytlodge.co.za.
13: Right now, in lands many of us feel deeply connected to, a mother holds a sick child, worried and fearful, as she knows her nearest hospital has been destroyed. This is the mother we go beyond borders to reach. Doctors Without Borders is there in the world's toughest places. We go where others can't or won't, and we go immediately. When you give to us, we go even further. Visit msf.org.za/sadaqa, that's SADAQAH, and support Doctors Without Borders today. Doctors Without Borders, we go there.

0: है. आप जितना मर्जी कुछ किए जा रहे हैं, आप रिसर्च फेलोशिप्स ले रहे हैं, आप ग्रांट्स विन कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं रिसर्च करने के लिए, आपने कितना कुछ कर लिया, लेकिन वो रिसर्च जब जब पढ़ने वाले की तरफ पहुंची नहीं है, वो रिसर्च जब एक बुक शेल्फ में जाके थीसिस बन के पढ़ी हुई है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है. फायदा एक फायदा है, ठीक है, आपको आपने रिसर्च की, आपने इतना एक नॉलेज में कंट्रीब्यूशन, लेकिन वो नॉलेज किसी पढ़ने वाले की तरफ पहुंची नहीं है. तो यहाँ से आप अंदाजा करें कि पॉलिसी मेकर्स को कैसे पता चलेगा कि आपने क्या तजवीज़ किया, कैसे पता चलेगा किसी और रीडर को कि ओ ये इतना ज्यादा काम हो चुका है और मैं किसी और चीज के बारे में करूँ. तो आपको क्या करना है कि आपने पब्लिकेशंस पे बहुत जोर देना है. आपने पब्लिकेशंस इस तरह कीजिए कि जैसे आपका थीसिस है, आपके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो ज़्यादातर मास्टर स्टूडेंट्स को ये इल्म ही नहीं होता कि वो अपने थीसिस को या अपने चैप्टर्स को पब्लिश करवा सकते हैं. और थीसिस या मास्टर्स जो है वो एक बुक की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, आप उनको चैप्टर्स की शक्ल में भी पब्लिश करा सकते हैं. और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है आर्टिकल पब्लिकेशन, जो कि वो आपका आप लिखते हो सबसे पहले वो पेपर होता है, और जब वो पब्लिश हो जाता है तो वो आर्टिकल बन जाता है. तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी करना लाजमी था. और ये है कि आपको ट्रिम करने के लिए आपने क्या देखना है कि इस चैप्टर में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स ऐसे थे जो मैंने कहीं और नहीं पढ़े, ये सिर्फ मेरे हैं, ये मैंने चीज़ इंट्रोड्यूस कराई, ये मैंने चीज़ जो है ये मैंने अपने रीडर्स को बताई. आप वो पॉइंट्स लेके आप अपने आर्ग्यूमेंट्स पे एक जो है मेन आइडिया आपका होगा उसके ऊपर अपना आप अपना आर्टिकल जो है वो बुनते जाएं, लाइक ये तो बेहतरीन वर्ड होगा कहने के लिए. और फिर आप जो है उसके बाद देखें कि वो एक आर्ग्यूमेंट के आसपास सारी डिस्कशन जा रही है आपकी, आपका लिटरेचर रिव्यू भी उसी पॉइंट को बात करे, आपका मेथड्स भी उसी पॉइंट की बात करे, आपका फाइंडिंग्स ऑब्वियसली उसी पॉइंट की बात करें, और फिर आप उसको अच्छे से उसी पॉइंट को कंक्लूड करो. और ये बहुत मतलब मुख्तसर होता है, आपको 15-16 पेजेस हार्डली चाहिए होते हैं, इस मैक्सिमम जो है वो जा सकता है सम टाइम ये 19 पेजेस तक. और अगर वर्ड्स की बात की जाए तो मिनिमम 6000 से लेके 8000 और 9 मैक्सिमम तक जा सकता है, इंक्लूडिंग रेफरेंसेस. सो आपको इस चीज़ का ध्यान करना होगा कि आपको बहुत बेहतरीन किस्म के अपने आर्ग्यूमेंट्स को चूज़ करके ही अपने आर्टिकल को पेपर को आर्टिकल की शक्ल देनी है.
1: ज़बरदस्त, देखें कितना आसान हो गया उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि इस प्रोग्राम में आपको सारे टॉपिक जो है वो कवर हो गया, और कितनी आसानी. और सबसे बड़ी बात फहमीदा की ये कि माशाल्लाह ये बड़ी पॉजिटिव रहती हैं, और पॉजिटिव वे में कि अगर आपने पढ़ना है, सब कुछ लोगों को पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं होती है किस तरह पढ़ा जाए, लेकिन जब आपकी इंटरेस्ट का टॉपिक होता है ना तो आप उसको जो है मोर एक्सप्लोर करते जाते हैं. इसी तरह हम भी आपको ये कहना चाहेंगे कि ये बहुत वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, और हमारी डिस्कशन इनके साथ जारी रहेगी. वक्त जो है वो वैसे भी बहुत कम रह गया है, तो बहुत हम ज़्यादा क्वेश्चन इनसे कर नहीं सकते, लेकिन यह है कि एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है. सो स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया.
2: Discover the Africa of your dreams and surround yourself with her spectacular beauty. Relax beneath her serene sunsets and explore wildlife at its natural best. It's where the pride of Africa comes together. The Kwantu Private Game Reserve. Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit kwantu.co.za. The Kwantu Private Game Reserve, the place of gathering.
3: Gaza needs your support more than ever. Homes have been shattered and families have lost everything. With your support, our teams are delivering clean water tankers, feeding the hungry, and assisting orphans who have no one left. Let us give Gaza whatever help we can. African Muslims Agency, empowering, educating, inspiring.
4: World-class financial services only at Sapphire Global, your financial partner. If you are looking for Islamic Sharia and ethical financial products, look no further. Sapphire Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184 or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
3: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
1: जी वेलकम बैक करते हैं आपको मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी और बात हो रही है इस वक्त की रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको किस तरीके से किया जा सकता है बेहतरीन रिसर्च जो है वो आप कर सकते हैं और जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं और आपके लिए जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं तो वो उसमें ये है कि सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट जो है वो डिवेलप करें और उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते जाएंगे आपके जो स्किल्स जो हैं वो उससे आगे बढ़ते चले जाएंगे अच्छा अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मेन क्वेश्चन ख़वातीन के लिहाज से मैं फहमीदा से पूछना चाहूँगी कि फहमीदा ख़ासतौर पर जो ख़वातीन और जो घरेलू ख़वातीन हैं जो कि अपनी आला तालीम के लिए तहकीक के लिए ख़ानदान के लिए या दीगर ज़िम्मेदारियों में तवाज़ुन बैलेंस कायम करने के लिए जो है ना उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है वो पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन उन पर ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वो उन ज़िम्मेदारियों में सोचती हैं कि मैनेज नहीं कर सकती आप उनको क्या मशवरा देंगे और वो किस तरह से इस चीज़ को बैलेंस करके मैनेज कर सकती हैं
0: आपने कहा कि अगर उनका दिल है पढ़ने का अगर उनको उनके अंदर वो चिंगारी मौजूद है ठीक है अगर वो पढ़ना चाहती हैं सबसे पहली बात यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो करना चाहती हैं अच्छा मैं भी हाउसवाइफ थी जब मैंने स्टार्ट किया टीचिंग से पहले जो मैं आपको बताना चाहती थी कि अपने मास्टर्स को मैंने कैसे स्टार्ट किया तो मैं हाउसवाइफ थी मुझे एक शौक़ था कि मैंने आगे पढ़ना है मेरी वालदा की बहुत ख्वाहिश थी कि मैंने अपनी बेटी को बहुत पढ़ाना है और जैसे ही मुझे वो मौका मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला तो वो एकदम से नहीं मिला था उससे पहले मैं कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रही थी कहीं पे सुपरवाइज़र मौजूद नहीं है कहीं पे मैं लेट हो गई हूँ कहीं पे रिसर्च टॉपिक जो है वो अलाइन नहीं कर रहा सुपरवाइज़र से कहीं पे क्या मसला और कभी स्टडी वीज़ा नहीं आ रहा तो काफ़ी डॉक्यूमेंटेशंस के इश्यूज भी थे लेकिन वो चिंगारी जो थी ना वो आपके अंदर अगर मौजूद है तो आप डटे रहेंगे आप वो दिखाएंगे परसिवियरेंस कि अच्छा नहीं आप कर सकते हैं
1: लेकिन फहमीदा आप पे भी तो बहुत जिम्मेदारियाँ थी ना आपने उनको कैसे मैनेज किया क्या आपको लगता है कि ये पॉइंट है अगर आप ये मैनेज कर लें तो आपसे सब मैनेज हो जाएगा
0: अच्छा मैं ये कहूँगी कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा
1: राइट
0: आपको दिखाना पड़ेगा कि वाकई आप ये करते हैं और आपको थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ेगा अपनी स्टडीज़ को अगर आप में वो चिंगारी वो एक चीज़ मौजूद है तो आपने उसको राख नहीं बनने देना आपने उन लोगों के साथ रहना है आपने अच्छा मैं ये चीज़ भी कहूँगी कुछ लोग कहते हैं मोटिवेशन अगर मैं किसी को भी मोटिवेशन देती हूँ तो मोटिवेशन में थोड़ी सी हवा दे दूँगी चिंगारी को कि वो चलती रहे वो राख ना बने आपका काम है उसको वापस जो है वो उसको जलाए रखना आपने उसको एक जिस शक्ल में देना चाहती हैं उस अपनी मोटिवेशन को या अपनी उस ख्वाहिश को आपने जलाए रखना है और आपने डिसिप्लिन होके दिखाना है क्योंकि अगर बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे मुस्लिम्स भी हैं दूसरी कम्युनिटी से भी होंगे लेकिन अगर हम देखा जाए तो हमारी 5 नमाजें क्यों हम पे फ़र्ज़ की गई हैं हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने के लिए कि एक थोड़ा सा और कहते हैं अभी नई एक रिसर्च हुई है जिसमें ये पता चला है कि हमारे दिमाग का कुछ एक पोर्शन ऐसा है कि जब आप डिसिप्लिन आपका दिल नहीं भी कर रहा आप उठ रहे हो आपका दिल नहीं भी कर रहा आपको वजू करना है आपको छोड़ रहे हो और कह रहे हो कि मैंने नमाज के लिए जाना है या मैंने पढ़नी है अभी तो वो ट्रेन हो रहा होता है वो उसको पता चल रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता उसको पता ही नहीं चलता फिर आपको फील ही नहीं होता कि आप एक बोझ फील कर रहे हो किसी चीज़ स्टडीज़ का मैं स्टडीज़ की बात कर रही हूँ आप खुद बहुत वो चीज़ करोगे आप अपने काम जल्दी से घर के कर लोगे आप सोचोगे अच्छा इस टाइम पे मेरा बच्चा सो जाता है इस टाइम पे मेरे हस्बैंड जो है वो अपने काम के लिए चले जाते हैं तो मैंने ये घंटा जो है या मैंने ये 2 घंटे या 3 घंटे 30 मिनट मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए डिवोट करने
1: सही।
0: तो जब आप वो करके दिखाएंगे ना तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ही आसान करता जाएगा आपने अल्लाह को दिखाना है आपने محنت کرنی ہے اور دعا کرنی ہے, یقین رکھنا ہے. یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا, لیکن ڈیووشن دکھائیں, تھوڑی محنت کریں اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ محنت کے ساتھ ساتھ یقین بھی رکھنا ہے, لیکن ڈسپلن ہونا بہت ضروری,
1: بہت ضروری ہے. اور کتنی خوبصورت بات کہ دین اسلام نے ہمیں یہ سب سکھا دیا ہے کہ نماز جو ہے وہ ہمارے اگر مائنڈ میں ہے تو ہم نے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہی کرنا ہے. یہ بڑی خوبصورت ایگزامپل جو ہے فہمیدہ آپ نے دی ہے. فہمیدہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ایک اور کہ جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے, ایک یہ بھی جو ہے دماغ میں آتی ہے چیز کہ خواتین فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتی یا فیل نہیں کرتی اپنے آپ کو, ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے اب ایجوکیشن اسٹارٹ کی اپنی تو اس کا بینیفٹ ہم زیادہ بڑھ اپنی فیملی پہ ڈال دیں گے, اس کو کیسے کور کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اگر کوئی اپرچونٹیز ہیں تو وہ کیا ہیں؟
0: اچھا, میں اس کے لیے یہ کہوں گی کچھ چیزیں جو مجھے بھی پہلے علم نہیں تھیں, میں بھی یہ سوچتی تھی کہ اچھا یہ اتنا اتنا خرچ کرنے کے بعد ہی میں ڈگری کی طرف جا سکتی ہوں اور اتنا پے کروں گی تو میں رجسٹرڈ ہو کے کچھ کر سکتی ہوں. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ بہت سی اپرچونیٹیز ایسی ہیں, بہت سے گرانٹس ایسے ہیں, بہت سی اسکالرشپس ایسی ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں اسی یونیورسٹی میں جہاں پہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو علم ہے, سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ اگر آپ کو کچھ بھی علم نہیں ہے تو آپ ریسرچ کریں, پڑھنا, ریسرچ کرنا, گوگل پہ سرچ کریں. آپ سب سے پہلے یونیورسٹیز کے بارے میں جانیں, آپ کے آس پاس کتنی یونیورسٹیز ہیں, کن کن کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں. سم ٹائم آپ کے آس پاس اتنا کچھ موجود ہوتا ہے لیکن آپ کو علم ہی نہیں ہوتا. آپ سب سے پہلے یہ معلوم کریں ہے کیا کچھ آپ کے آس پاس جس کو آپ اویل کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیا سارا, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے وہاں پہ ان سے اپروچ کرنا ہے اور پتہ کرنا ہے کہ کیا ان کے پاس اسکالرشپ موجود ہے. ہو سکتا ہے آپ جس چیز کو سوچ رہے ہو کہ آپ کو اتنا پے کر کے کرنا پڑے گا, وہاں پہ ان کے پاس اسکالرشپ موجود اور آپ کا ایم ایس کے پی ایچ ڈی آرام سے ہو جائے. تو آپ نے ان سے پتہ کرنا ہے اور آپ نے ان کو یہ بتا کے رکھنا ہے, کیونکہ ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی یہ کوئی بھی تعلیم, کوئی بھی ڈگری عام ڈگری نہیں ہے. جو بھی آپ نے میٹرک سے لے کے جہاں جہاں تک آپ پہنچے ہو, ہر اچیومنٹ جو ہے وہ ماشاء اللہ اس کو وہ قابل تعریف ہے. لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ جہاں پہ آ کے ریسرچ سے کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو آپ لوگ اگر اپروچ کرتے ہو تو یونیورسٹی سم ٹائم خود ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اسٹوڈنٹس ملے اور ہم ان کو اسکالرشپس دیں, برسریز دیں. تو آپ ہو سکتا ہے آپ ان لکی اسٹوڈنٹس میں ہو جاؤ, اگر ایک یونیورسٹی سے نہیں ملا آپ دوسری سے اپروچ کریں. تو مجھے یقین ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ آپ کو اسکالرشپ ملے گا, برسری ملے گی اور اپنی ایم ایس سی پی ایچ ڈی کو اپنی ہی پسندیدہ انٹرسٹ کے اس ڈائریکشن میں لے کے جا کے ڈگری لے سکتے ہو. لیکن آپ کو اس سلسلے میں محنت کرنی ہوگی, آپ کو ریسرچ کرنی ہوگی, آپ کو ڈھونڈنا ہوگا, یہ ورک آؤٹ آپ کو کرنا پڑے گا.
1: زبردست فہمیدہ, بالکل محنت جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محنت کا صلہ جو ہے وہ آپ کو ضرور دیتے ہیں. فہمیدہ, ڈاکٹر فہمیدہ سوری, ہمارے ساتھ موجود تھیں اور فہمیدہ آپ کا بہت شکریہ آپ کی اتنی خوبصورت اور زبردست ڈسکشن کا اور اتنی انفارمیشن کا, اور آئی ہوپ کہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے یہ رہنمائی جو ہے اس کا ذریعہ بنی ہوں گی. بہت شکریہ آپ کے ساتھ کا.
0: جی ناظرین, آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے بلایا. تھینک یو سو مچ فار اپرچونٹی آلسو. اور مجھے 6 سال پہلے کی ساری یادیں تازہ ہو گئیں جب میں ٹیچر سے ڈیپوٹی بنی تھی اور آپ نے مجھے بلایا تھا, اور الحمدللہ آج آپ نے مجھے بلایا اور ایک ڈفرینٹ سیم جگہ پہ ڈفرینٹ کانٹیکٹس میں ملے, الحمدللہ.
1: بہت شکریہ فہمیدہ آپ کی اس یاد کا, آپ کے اس ساتھ کا. جی ویورس اینڈ مائی اول لسنرس, دس واز مائی پروگرام مڈ مارننگ ٹاک ود مریم ہاشمی, اینڈ آئی واز ہیئر ایز اے گیسٹ presenter, and it was such a lovely opportunity to come back to your place where you worked for many years, and it was such a lovely experience. And I would like to say big thanks to Salaam Media. They always welcome me, they always accommodate me, and they always gave me the opportunity that I really admire. So lots of wishes for Salaam Media, lots of wishes for its team, and inshallah دوبارہ زندگی رہی, دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سب سے اور اس ٹیم سے, اس جگہ سے ہم دوبارہ ضرور ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے, مجھے, مریم ہاشمی اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. بہترین ساتھ رہا, بہترین وقت رہا, اور اگین بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
5: Listen to something fresh. Listen to Salaam Media, your humanitarian broadcaster.

0: This is Salam Media Live from Johannesburg, South Africa. Ji haan, this is Maryam Hashmi with show named Mid-Morning Talk with Maryam Hashmi. Ji haan, aaj hum baat kar rahe hain different mauzu pe, different topics hain hamare paas aur bahut achhi guftugu hamare saath jari. Hamare saath do guest maujood the. Ab hamare saath hamare aise guest maujood hain jinka taluk direct media se hai. Aur jaise humne break pe jaane se pehle baat ki thi ki media ka kaam sirf khabar pahunchana nahi hai balki sach ko samne lana hai aur logon ko bakhabar rakhna hai. Lekin aapki ek zara سی غلط رپورٹنگ ایک ذرا سی غلط خبر سے کئی لوگوں کی زندگیاں خراب بھی ہو جاتی ہیں کئی لوگوں کی زندگیاں متاثر ہو جاتی ہیں جبکہ کئی آپ کی ایک اچھی رپورٹنگ سے ایک اچھے امیج سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں تو یہ چیز کا بڑا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ ایک ریسپانسیبل پوزیشن پر ہیں آپ ایک اچھی جگہ پر ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں آپ کی جو ہے خبر کو پہنچانا دوسروں کو آگاہ رکھنا بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں اپنی انفارمیشن لیکن اس کو کریکٹ رکھنا کتنا ضروری ہے اور سم ٹائم جب ان پہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے میڈیا پرسنز پہ ایک پریشر جو ہے وہ بھی بلڈ اپ ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ تو فیئر رپورٹنگ کرنا وہاں پر کتنی ضروری ہے تمام فیکٹرز ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جس کی بڑی اہم ضرورت ہے ہمیں جاننا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں لندن سے جوائن کیا ہے وائس پریزیڈنٹ ہیں پریس کلب لندن کے زین العابدین ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم زین
1: Welcome, Sam. Thank you so much, Maryam. It's really nice seeing you once again. And ایک فاصلے سے دیکھنے کو مل رہا ہے ہم ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کرتے رہے ہیں لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے
0: جزاک اللہ جی زین کے بارے میں بتانا چاہوں زین میری کلیگ ہیں اور بڑی ہماری اچھی گفتگو رہتی ہے بڑے اچھے ٹاپکس جو ہیں ہم کور کرتے ہیں اور ان کی صحافت پہ مجھے بہت زیادہ بھروسہ ہے بڑی اچھی جو ہے ان کی کوریج ہوتی ہے تو اسی سلسلے میں ہم آپ سے بات کریں گے اچھا زین ماشاء اللہ یہ بھی میں ضرور بتا دوں اپنی آڈینس کو بھی اور اپنے لسنرس کو بھی کہ زین جو ہے ابھی وائس پریزیڈنٹ ہوئے ہیں پریس کلب لندن کے تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی سب سے پہلے تو آپ کو سوری مبارکباد دینا چاہوں گی کانگریچولیشنز آن یور سلیکشن اینڈ آلسو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پریشر کتنا بڑھ گیا
1: دیکھیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ایک صحافت اور ایک صحافت کے اندر سیاست تو جب ہم صحافت کی بات کرتے ہیں ایز وی آل نو دیٹ اٹس دی فورتھ پلر آف اے سٹیٹ یعنی تین پلرز جو ہیں آپ جتنے بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں جو کامیاب ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ان کی اگر آپ بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تین جو پلرز ہیں یعنی جو ان کی جوڈیشری ہے جو ان کی لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں جو ان کی ایگزیکٹو ہے یعنی لیجسلیٹو ایک قانون بناتی ہے ایگزیکٹو جو ہے وہ اس پر عمل کرواتی ہے اور جوڈیشری جو ہے وہ جو عمل نہیں کرتا اس کو جزا اور سزا دیتی ہے سو جو چوتھا سب سے بڑا ستون ہے وہ میڈیا بنتا ہے تو جب آپ میڈیا میں آلریڈی ہیں یعنی ایک ستون کو سنبھالے ہوئے ہیں اس سے پیرلل آپ نے پھر ایک سیاست بھی کرنی ہے پالیٹکس بھی کرنی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں بہت سارے ایلیمنٹس کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے بہت سارے دوستیاں ہیں بہت سارے جو چیزیں ہیں بہت سارے معاملات ہیں ان کو بڑا دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے یعنی اب آپ نے جب آپ صحافی ہیں جب آپ صرف پالیٹیشین ہیں تو آپ کی ذمہ داری صرف پالیٹکس ہے تو وہ قدرے آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے آپ کی ایک گراؤنڈ ہے اس میں آپ نے کھیلنا لیکن ونس یو آر اے جرنلسٹ پلس اے پالیٹیشین ان جرنلزم سو دیٹ از اے ڈفرنٹ بال آل ٹوگیدر تو اس میں آپ کو پھر دو تین چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اپنے کولیگز کے ساتھ جو ہے وہ بہت دھیان سے چلنا پڑتا ہے آپ کو ایک ایک چیز اور ظاہر ہے آپ نے مسلسل اسکرین جو ہے وہ فیس کرنی ہے مسلسل اسکرین پہ رہنا ہے تو آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہا ہوگا وہ سنا جا رہا ہوگا اور اس کو بہت لحاظ دھیان سے جو ہے اسے بولنا تو یہ ایک پراپر پریکٹس ہے سو دا گڈ تھنگ از کہ آئی بین پریزیڈنٹ ان مائی یونیورسٹی ایز ویل سو مجھے چار سال کا وہاں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کام آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین جو عمل ہے اس سارے پروسیس میں جو میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ خاموشی یعنی جتنا آپ خاموش رہیں جتنا کم بولیں وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے
0: صحیح اچھا زین یہ بھی ہے کہ آپ ماشاء اللہ دو ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ نے موو کیا ہے اور ان کا ایکسپیرینس بھی آپ کا بہت ڈفرینٹ ہوگا تو آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ وہاں پریشر اپنے کنٹری میں پریشر ہوتا ہے یا انسان تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے اور فورن کنٹری میں کسی پوزیشن پہ کھڑے ہونا کتنی بڑی جو ہے وہ ذمہ داری بن جاتی ہے کتنا بڑا پریشر جو ہے وہ ہو جاتا ہے
1: دیکھیں مریم بہت بڑی ذمہ داری ہے اس میں دو تین چیزیں میں آپ کو سب سے مین چیز بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ پاکستان میں ہیں تو آپ ڈائریکٹلی انوالو ہیں چیزوں میں ٹھیک ہے اور ڈائریکٹلی آپ جو ہے وہ پاکستان کے مسائل پر گفتگو کریں تو آپ کو زیادہ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। और पाकिस्तान में रिलेटिवली लोगों को डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है उसमें हम थोड़ा सा पीछे हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसमें फिर ये है कि हमारी कुव्वत बर्दाश्त भी उस कदर नहीं है। यानी आप किसी सियासतदान को अगर क्रिटिसाइज करेंगे, उसके ऊपर सवाल उठाएंगे, तो वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। आप किसी जो एग्जीक्यूटिव का बंदा है, जो कोई एसी डीसी है, उस पर उसकी कारकर्दगी पर सवाल उठाएंगे, वो आपको हो सकता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। इसी तरह से जुडिशरी में आप जो है वो तोहीन अदालत लग सकती है। सो ये जो चीज है, जब आप डायरेक्टली एक मुल्क के अंदर एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो मुख्तलिफ होता है। जब आप किसी दूसरे मुल्क में, अब जैसे आपने तारुफ में बताया, तो मैं बेसिकली पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन का जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन, इट मीन्स के हमने दो फील्ड्स को देखना है। एक तो ये कि हम लंदन की खबरों को ऑब्वियसली लेंगे, हम यूके के मामलात, यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो मुश्किलात हैं इमिग्रेंट्स की, खासतौर पर पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हम जो यहाँ पे वैसे ओवरऑल यूके के मसाइल हैं, उन पर भी जो है वो बात करते हैं। तो मामला ये है कि यहाँ पर थोड़ा सेफ आप इसलिए हो जाते हैं कि ये शायद पाकिस्तानियों के मामलात में उतना जो है वो इंडल्ज नहीं करते खुद को, और ये इतना फिक्रमंद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में आपके लिए मुश्किल इसलिए हो जाती है कि आप जब भी यहाँ बैठे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कदरे ज्यादा दलेर हो जाते हैं, और यहाँ पे जो बहुत सारे यूट्यूबर्स और वो जो हैं वो पाकिस्तान में हर किस्म की बात, पाकिस्तान के हर मामले पर खुला बात करें।
0: एहतियात कर दी चाहिए, एहतियात कीजिए। अच्छा, सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, जब भी हम ओपन करते हैं एज अ नॉर्मल व्यूअर, आप देखते हैं तो उसमें हर शख्स जो है वो अपनी राय को एज अ न्यूज प्रेजेंट कर रहा है। तो आप जैसे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या इस पे कंट्रोल होना चाहिए, कि आपकी न्यूज वेरीफाइड होनी चाहिए, थ्रू वेरीफाइड चैनल आनी चाहिए, कि हर शख्स जो है वो अपनी ओपिनियन दे रहा है और उसकी व्यूज की खातिर न्यूज जो है वो बनती जा रही है, तो वहां पर फिर जर्नलिस्ट का क्या किरदार है, या आपकी जैसे प्रेस क्लब लंदन है उसमें आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है?
1: देखिए मरियम, दो चीजें इसमें मेरे ख्याल में दोनों तरफ की जिम्मेदारी आती है, व्यूअर की भी और जो एनालिस्ट है उसकी भी। यानी एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट चीज है, न्यूज बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अब न्यूज ये है कि मैं ये कहूं कि जो है वो गली के अंदर एक खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ है और उसमें दो शख्स जान बाँक हो गए, ये तो होगी खबर और ये वेरीफाइबल है। यानी आप मुख्तलिफ इदारों के पास जाते हैं, आप उनसे पूछते हैं किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग जो है वो जान से गए, ये सारी चीज होगी। अब इसमें अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि ये लोग यहाँ से आ रहे थे, यहाँ पर इनको ये मामला आया, ये ज़हनी स्ट्रेस में थे, ये वाली कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अगर बंदा मर गया है तो वो अपने साथ ही लेके चला गया ये कहानी। तो ये जो एनालिसिस है, ये जो है ये इसमें क्या सराई भी हो सकती है, इसमें अपने आप से भी एडिशन हो सकती है। लेकिन जो बेसिक न्यूज है, बेसिक न्यूज हमेशा वही रहेगी कि ये एक्सीडेंट हुआ है और इसमें दो लोग जो हैं वो जांबक हुए हैं। सो जो एक्स्ट्रा एड ऑन चीजें होती हैं उसमें अब आपकी जिम्मेदारी बतौर व्यूअर ये बनती है कि आप उसको खुद वेरीफाई करें। और उसमें ये होता है कि आप देखें, अब मामला ये है कि हम ये समझते हैं शायद कि अगर कोई भी शख्स गली में खड़ा होकर वो हमें खबर दे रहा है तो इट मीन्स कि हमने उसको क्या मनोन उस पर यकीन करना है। तो मेरे ख्याल में ऐसे नहीं है। उसमें ये है कि इतने बड़े बड़े इदारे हैं, अब आप देखें एक खबर बीबीसी दे रहा हो और एक जो है वो गली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दे रहा होगा, तो आप किसको बिलीव करेंगे? आप क्रेडिबिलिटी को यकीन करेंगे। जो क्रेडिबिलिटी होती है ना, वो चीज है सबसे मेन चीज। यानी जो बड़े इदारे हैं जिनके हर शहर में नुमाइंदे हैं, हर मुल्क में नुमाइंदे हैं, वो बेसिकली क्रेडिबिलिटी के स्तर पे चल रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो है ये सारी मामलात, कोई भी खबर, अब आप एक खबर है, फॉर एग्जांपल कराची में मैं एक खबर देता हूँ जी, के कराची की एक बस में एक हमला हुआ जिसमें एक शख्स ने दो लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। अब ये एक खबर है, ये सिंपली खबर है। अब इसको मैं अगर ट्विस्ट करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कराची में एक मुहाजिर ने दो पंजाबियों पे हमला कर दिया। अब ये जो खबर है ये टोटली जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस चेंज कर देगी।
0: Exactly.
1: और टोटली जो है वो उसके जो मामलात हैं वो एक लड़ाई की तरफ चले जाएंगे। और अगर लंदन के प्रस्पेक्टिव से देखें तो आप जो है वो नाइजल फराज के ट्वीट पढ़ लें, जिया यूसुफ के ट्वीट पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि एक खबर को किस तरह से ट्विस्ट किया जाता है। यानी वो जो कोई फिगर होता है, कोई फैक्ट होता है, उसको किस तरह से जो है वो अपनी फेवर में यूज करने के लिए उसको फैब्रिकेट करें।
0: बिल्कुल, और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हमें यूज करने चाहिए ताकि हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके और हमें वेरीफाइड जो है वो न्यूज जो हमारे तक पहुंच सके। अच्छा जैन, सोशल मीडिया की जैसे हम बात करते हैं, माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला है, जैसे कि हम प्रीवियस दौर की बात करते हैं, एक दो चैनल्स थे उनसे हमें जितनी इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर सकते थे हम करते हैं, आजकल जो है हर न्यूज हमारे हाथ में है, अपग्रेडेड अपडेटेड हर चीज हमारे हाथ में मौजूद है। आप क्या समझते हैं, क्या ये जर्नलिज्म के लिए थोड़ा खतरा बन गया है या इसके बेनिफिट्स ज्यादा है?
1: नहीं, मैं ये समझता हूँ कि दोनों चीजें हैं, इसका फायदा भी ले सकते हैं, इसका नुकसान भी हो सकता है। नुकसान इस सेंस में है कि जब आप क्रॉस चेक नहीं करते, एक जर्नलिस्टिक एथिक्स में आता है कि आप कोई भी चीज है तो उसको आप मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म करें। अब देखें, हो सकता है कि आपका जो सोर्स है वो भी तो बाइस्ड हो सकता है, यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल पीटीआई की खबर ले रहे हैं, नून लीग की खबर ले रहे हैं, तो अगर आप पीटीआई की खबर पीटीआई के शख्स से लेंगे तो आपको उसमें वो अपना जो एलिमेंट है उसका, जो उसकी एक बाइसनेस है, वो तो कहीं ना कहीं आएगी, वो आप चाहें या ना चाहें। उसके अलावा अगर आप नून लीग के बंदे से खबर लेंगे तो वो एक बाइसनेस तो आएगी। तो बतौर जर्नलिस्ट ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने कौन सी चीज रखनी है, कौन सी चीज नहीं रखनी, और फिर मल्टीपल सोर्सेज से सेम खबर को आपने कंफर्म करना। यानी अब एक जलसा होता है लाहौर के ग्राउंड में, और वो आप फॉर एग्जांपल जमात इस्लामी का एक जलसा होता है, तो वो अब जो पीटीआई का शख्स है उसको वो 1000 का जलसा लगेगा, जो नून लीग का है उसको 2000 का लगेगा, जो जमात इस्लामी का उसको 1 लाख की गैदरिंग लगेगी, और जो आजाद सोर्सेज हैं वो शायद आपको कोई एक मुनासिब फिगर 8-10 हजार का बता दें। तो होता ये है कि आपने ये चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम विद ट्रेनिंग वो आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। जब आप आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रेनिंग के थ्रू गुजरते हैं और जब आप पढ़ते हैं मीडिया को, बेसिकली अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में देखिए, मैं भी अकाउंट बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं, कोई जो शख्स जिसको मीडिया एथिक्स का नहीं आइडिया, जिसने मीडिया एथिक्स नहीं पढ़ी, वो भी जो है वो बना सकता है। तो होगा ये कि मैं और आप वीडियो बनाएंगे तो हम बहुत सारी चीजों के, बहुत सारे मॉरल्स एथिक्स का लिहाज रखेंगे, लेकिन जो शख्स जिसको इस चीज का आइडिया नहीं है वो बिल्कुल डिफरेंट। सो अब जो व्यूअर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि इन तीन लोगों ने जो वीडियो बनाई है इनमें से मीडिया को कौन जानता है, एथिक्स का कौन ख्याल रखता है। सो ये अब उस पर जिम्मेदारी बनती है। सो मेरे ख्याल में इसमें बहुत सी चीजें जो है, अब क्योंकि AI भी आ गया है तो बहुत मुश्किल होगी, खासतौर पर उन लोगों के लिए असल खबर ढूंढना बहुत मुश्किल होगी है जो इन चीजों से अभी वाकिफ नहीं है, जिनको इस चीज की वाकफियत नहीं है, यानी उनको यही आइडिया नहीं होता कि AI बेस्ड वीडियो कौन सी है और जो नॉर्मल ओरिजिनल वीडियो है वो कौन सी है। तो ये एक व्यूअर और जो खबर देने वाला, उन दोनों की बाहमी ट्रेनिंग की मेरे ख्याल में जरूरत है।
0: सही। अच्छा, और जो हमारी यूथ है वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है न्यूज से और अपनी रिपोर्टिंग वगैरह जो वो करते हैं, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे जैन, कि किस तरह वो रिपोर्टिंग करें अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं? प्रॉपर एजुकेशन लेना कितना जरूरी है, ना कि सिर्फ एक मोबाइल फोन और आप सिर्फ एक न्यूज दे दें, इस पे जरा रोशनी डालें।
1: देखें, अगर एज लॉन्ग एज सोशल मीडिया की अगर आप बात करें तो सोशल मीडिया पे तो क्योंकि किसी किस्म के कोई चेक्स नहीं है प्रॉपर, तो जब आप ये जिंदगी में ये मकसद बनाते हैं कि मैंने सोशल मीडिया पे काम करना है, तो फिर तो आप ऑब्वियसली देखेंगे कि सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनको सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, जिनके सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, तो आप उनको फॉलो करना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपने प्रॉपर ऑथेंटिक और जर्नलिज्म में आना है और जर्नलिस्टिक एथिक्स को मलहूजे खाते रखते हुए, यानी उनको अपने जहन में रखते हुए फिर आपने काम करना है, जब आप कोई बड़ा नाम जर्नलिज्म में बनना चाहें, तो फिर आपको ऑब्वियसली एक ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना होगा। अब ट्रेनिंग देखें, हम अब ये भी कह सकते हैं कि जो सबसे पहले जर्नलिस्ट थे क्या वो ट्रेनिंग लेते थे, उन्होंने भी तो कुछ ऐसी चीजें की। होता ये है कि हम बहुत सारे तजुर्बात जो हैं वो खुद जिंदगी में करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम दूसरे के तजुर्बात से सीख सकते हैं। इंस्टेड कि मैं एक गलती जो है वो खुद करूं, तो हो सकता है कि जो मेरा सीनियर है उसने पहली वो गलती की है और उसने उसको बेहतर करके मुझे दिखा दिया कि ये वाली गलती मत दोहराना। सो द बेटर वे इज मेरे ख्याल में कि जो सीनियर्स हैं आपके, जो सीनियर जिन्होंने पहले काम किया है आपको, मतलब हो सकता है उनकी भी बायसनेस हो, उनके भी बहुत सारे जो है वो अपने मामलात हों, लेकिन आपने 3-4-5 आप मल्टीपल लोगों को देखें जिनको आप आइडियलाइज करते हैं, जिनको आप बेहतरीन समझते हैं, किसी एक शख्स पर स्ट्रिक्ट ना हो। यानी अगर मुझे किसी एक बंदे का स्टाइल पसंद है और मैं उस पर स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, तो मेरे ख्याल में फिर मेरे अंदर उसका अक्स नजर आना शुरू हो जाएगा। तो एक तरह का आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे शाहजेब खान ज्यादा पसंद है और मैं बिल्कुल उनको कॉपी करना शुरू हो जाऊंगा, तो फिर होगा ये कि लोग शाहजेब खान ज्यादा कोई सुनेंगे मुझे नहीं सुनेंगे। उसके पीछे वजह यह है कि उनके पास एक कॉपी और एक ओरिजिनल मौजूद है।
0: नहीं, तो बिल्कुल आपका अपना अपना एक स्टाइल होना चाहिए, आपकी अपनी एक बात होनी चाहिए, आप अपनी एक राय रख सकते हैं। अल्लाह सुभान व तआला ने हर इंसान को ये तौफीक दी है, ये हिम्मत दी है कि आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और माशाल्लाह हम जिन कंट्रीज में हैं वहां पर आप अपनी बात को जो है वो दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, बट इन अ राइट वे। इट्स टाइम फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी विल जस्ट कम बैक आफ्टर दिस ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया।
2: वी वर्क हार्ड टू बिल्ड आवर होम्स, बिजनेसेस एंड फ्यूचर्स। Protecting them shouldn't mean compromising the values that matter most. ACNE Group of Companies, a Muslim-owned business, offers our short-term diamond insurance covers founded on ethical principles, transparency, integrity, and responsible service. This allows us to provide insurance solutions that align with ethical values while maintaining the protection and service standards you expect. To ensure complete peace of mind, all premiums, claims, and premium investment funds are managed through designated Sharia-compliant bank accounts, reflecting our ongoing commitment to ethical and responsible financial practices. From your first inquiry to the moment you need to claim, we are committed to providing professional, transparent, and reliable support. Choose insurance that reflects your values while giving you confidence and peace of mind. Speak to ACNE Group of Companies today to learn more about our commercial, engineering, professional indemnity, and liability diamond insurance covers. Call Rafiq Isaacs on 084-822-6570. ACNE Group of Companies comprises authorized financial services providers under FSP numbers 43281, 45553 and 45915. Products are underwritten by New National Assurance Company Limited, FSP number 2603.
3: Kids these days are smart, and when you're competing for their attention against their smartphones, you need to make smart choices, like using Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil in every meal you make. It's naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether you're cooking, frying, or baking, you get the great-tasting results that'll get their attention faster than the latest app. And if that doesn't work, change the Wi-Fi password. Sunfoil. Now we're cooking.
4: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine, and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people, and tourists, with its four-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach and other amenities, your stay will be truly unforgettable, as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415 or visit www.albaytlodge.co.za.
5: Yasin Badat Financial Advisory. Are your financial goals feeling out of reach? Yasin Badat Financial Advisory is here to turn your aspirations into achievements. Our dedicated team, armed with a history of success, is ready to guide you through the complex nature of financial and investment planning. Whether you're a seasoned investor or new to the game, our personalized solutions cater to your unique goals and risk appetite. Trust in our commitment to transparency, integrity, and excellence. Ready to unlock a world of financial freedom? Partner with us today. Call Yasin Badat Financial Advisory at +27 33 346 2071 or visit www.yasinbadat.com. Yasin Badat Financial Advisory, guiding you to financial success.
6: Africa. Give the gift of clean water with Africa Muslims Agency. With every water well or borehole you donate, your drop becomes a river, reconnecting communities to nourishment, education, dignity, and empowerment. Sponsor a water well for 17,000 Rand in Africa or a borehole for 65,000 Rand in Afghanistan or Africa. Quench the thirst. Reconnect the soul with Africa Muslims Agency.
7: Listen to something fresh. Listen to Salam Media. a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism.
0: जी वेलकम बैक मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी. जी हाँ, बात हो रही है मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी की और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब लंदन जो है वो हमारे साथ मौजूद है. जैन, बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन करना चाहूंगी. माशाल्लाह आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं, आप एक लीडरशिप पोजीशन पर हैं. मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ट्रस्ट बिल्ड करना, लोगों का ट्रस्ट लेना, उसके लिए क्या एफर्ट जरूरी है, क्या करनी चाहिए और एज अ लीडर जो है आप किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं?
1: मेरा ख्याल है कि ट्रस्ट के लिए सबसे मेन चीज ये है कि उस शख्स से बात की जाए. अब और दूसरा ये है कि ट्रस्ट जो है वो मेरे ख्याल में बाहमी अमल है, उसमें आप अकेले का किरदार नहीं हो सकता, दूसरे शख्स की एफर्ट भी बहुत जरूरी है. जैसे अब मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ हजरत अली तआला अन्हु के बारे में कि उनके पास एक शख्स आता है और वो ये कहता है कि मेरा एक बाजू कट गया और मेरे पे जुल्म हुआ. अब वो बाजू जाहिर है उसका कटा होता है, वो आता है तो मेरे पे जुल्म हुआ. अब हजरत अली तआला अन्हु जो है वो फैसला नहीं करते, वो कहते हैं मैं पहले दूसरे शख्स को देखूंगा, हो सकता है तुम उसके दोनों बाजू काट के आए. अब बात यह है कि हम जब एक शख्स की बात सुनकर फाइनल फैसला दे देते हैं तो तब मामला खराब होते हैं. तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन जो तरीका है, जो सबसे बेहतरीन अमल है, वो यही है कि जब भी कोई भी आपके पास मामला आए तो जो बंदा आपको कहानी सुना रहा है, जैसे हमने पहले बात की क्रॉस वेरिफिकेशन की, एक तो क्रॉस वेरीफाई करें और दूसरा ये कि आप उस शख्स की कोई बायसनेस हो सकती है. जब वो अपने बारे में कोई भी शख्स बताता है तो वो हमेशा अपने आप को हीरो और दूसरे को विलन पेश करता है. आपने कई जितनी भी कहानी पढ़ी होंगी उसमें बड़ा रेयर होगा कि जो कहानी लिखने वाला है वो खुद को विलन की जगह पे रख रहा हो, वो हमेशा खुद को हीरो की जगह पे रखता है. सो आपको जब आप इस तरह के एनालिसिस करना शुरू हो जाएंगे, कोई भी शख्स किसी के बारे में भी कोई खबर लेके आता है तो मेरे ख्याल में बतौर साफी ये हमारे लिए मजीद आसान है कि कोई भी आपको किसी के बारे में बात बताता है तो आप फौरन फैसला ना करें और फौरन उसके सामने ही उसको फैसला ना सुना दें कि वो तो पहले भी ये और ये. इससे इसके बरक्स मेरे ख्याल में ट्रस्ट बिल्ड तब होगा जब विद पैसेज ऑफ टाइम दो तीन दफा आपके साथ कोई इस तरह की बात करेगा जब उसको पता होगा कि आप आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे या आप इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे कि आप दूसरे बंदे को भी पैरेलल साथ बिठा लेंगे तो जो नफ्सियात है अगले शख्स की वो भी काम करना शुरू हो जाएगी कि अगर मैं इस तरह से करूंगा या कोई दरमियान में मामला खराब करने की कोशिश करूंगा तो मेरे ऊपर ये सारी बात आएगी. सो ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे बेहतरीन जरिया यही है कि आप दोनों साइड ऑफ द स्टोरी को सुने और फिर फैसला करें और जो कोई किसी के बारे में आपको आके कोई भी खबर दे रहा है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करें. आप जाहिर है बहुत सारे इमोशंस होते हैं आपके अंदर और बहुत सारे मामला होते हैं, बाज दफा आपकी किसी के साथ बहुत अच्छे मामला नहीं चल रहे होते. सो ये यानी फ्लो ऑफ लाइफ है, ये ऐसे ही चलता है कि बाज दफा आपके बहुत अच्छे दोस्त आपके मतलब
0: अगेंस्ट हो जाते हैं. लेकिन ये है कि लीडरशिप इसी को कहते हैं कि आपने अगर लीडरशिप करनी है तो आप में ये क्वालिटीज भी होने चाहिए कि आप हर चीज को, हर इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सके और अच्छे ठंडे दिमाग से जो है वो फैसला कर सके. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाहिर है ये पोजीशन लेना आसान नहीं है और इसकी जिम्मेदारियां भी उससे ज्यादा. अच्छा जैन, आपने माशाल्लाह बहुत काम किया है. मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आप इस पोजीशन पर हैं तो लंदन में जो मीडिया के मुस्तकबिल के लिए अगर कोई अहम तब्दीली आपको लाने का मौका मिले तो वो मेन चेंज क्या होगा जो आप करना चाहते हैं?
1: टू बी वेरी फेयर, अगर मुझे कोई शख्स ये जिम्मेदारी दे तो मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे काम करना चाहूंगा. उसके पीछे वजह ये है कि देखें हम बिकॉज हमने दो जगह को कवर करना होता है, यानी हमने लंदन के मामला को भी देखना है और पाकिस्तान के भी मामला को देखना है, खासतौर पर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा यहाँ पर है उनकी खबर को देखना है. सो मामला ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, वो उस प्रॉपर ट्रेनिंग से गुजर के नहीं आए होते. सो जब वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ गुजर के नहीं आए होते तो उनको चीजें समझाना, उनको चीजें बताना वो उतना आसान नहीं रहता. और दूसरा ये है कि यहाँ पर मीडिया जो है वो फर्स्ट जॉब नहीं है बहुत सारे लोगों की, यानी जब आप बतौर साफी काम करें तो ये आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बल्कि ये आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ जो है वो जो आपका लव फॉर मीडिया है या लव फॉर स्क्रीन है उसकी वजह से आप कर रहे होते हैं. So, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपने पैरेलल दो चीजें लेके. आप पाकिस्तान में कोई अगर प्रोग्राम होता है तो ही और शी डजंट नीड टू डू एनी अदर वर्क फॉर देयर लिविंग. तो यहाँ पर यह है कि आपको पैरेलल कोई चीजें वो भी करनी पड़ती हैं, यानी आपका जो दाल रोटी है वो कहते हैं ना छान मारे हैं फलसफे सारे दाल रोटी सबसे भारी. तो दाल रोटी जब तक आपने आपकी वो पूरी नहीं होती तो आपको बाकी सारे काम जो है वो पसे पुष्ट आ जाते हैं. सो अब मामला ये है कि यहाँ पर आपने ये चीज कैसे पैरेलल लेके चलनी है कि आपके जो पर्सनल मामलात हैं, आपका जो रोजगार है वो और जो आपकी सहाफत, जो आपका पैशन है, वो कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, तो ये बड़ी मुश्किल चीज है। इस पर जो ट्रेनिंग है, इसको किस तरह से मतलब पैरेलली दोनों चीजों को लेके चला जा सकता है, इस पर मेरे ख्याल में काम करने की जरूरत है, और इस पर मैं जरूर कोशिश करूंगा, या मेरी ख्वाहिश है कि इस पर काम जो है वो करना चाहिए।
0: जबरदस्त। अच्छा जैन, एक और बात है कि आजकल माशाल्लाह एआई का, जैसे आपने बताया कि दौर है और एआई है, मिस इन्फॉर्मेशन है और ऑनलाइन प्रेशर है, ये तमाम जो चीजें हैं इनका बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना है आजकल जर्नलिस्ट को। तो एज अ लीडर मैं पूछना चाहूंगी कि जो कम्युनिटी के जो जर्नलिस्ट हैं, तो उनके लिए, उनको इन चैलेंजेस के लिए आप किस तरह तैयार करना चाहेंगे, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे?
1: देखिये, मेरा ख्याल ये है कि आप अपने जो आपका जहन है, एक एक अगर आप पीछे देखें तो थ्रू आउट जितने भी लोग हैं वो बगैर एआई के, बगैर चैट जीपीटी के उन्होंने जिंदगी गुजारी है, और बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजारी, बड़ी बेहतरीन
0: जी।
1: तो मामला क्या है कि मेरा ख्याल ये है कि आप एआई से, अगर मैं भी एआई से पूछ रहा हूँ, आप भी एआई से पूछ रही हैं, जो चार साफी और हैं वो भी एआई से पूछ रहे हैं, तो ओरिजिनैलिटी मर जाएगी। यही एक ओरिजिनैलिटी होनी चाहिए हर शख्स की, एक जो है वो खुदा ताला ने ये एक सलाहियत दी है हर शख्स के अंदर, एक खूबी रखी है कि वो दूसरे से डिफरेंट है, वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ज्यादा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो दूसरे से डिफरेंट है। और हर, अब यही प्रोग्राम आप कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर चार पांच छह और साफी होंगे वो कंडक्ट करते हैं, या मैं अपना प्रोग्राम कंडक्ट करता हूँ, हर शख्स का अपना एक अंदाज है, अपना जो है वो तर्ज है चीजें करने का। सो जब आप सारे एक चीज पे रिलाय करेंगे तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो मिक्स एंड मैच होना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक ही तर्ज की चीजें जो है वो मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी। अभी नहीं, क्योंकि अभी ये नया है, और जो है वो लोग उसको उस तरह से, बहुत सारे लोग उस तरह से नहीं जानते, कुछ बेहतर जानते हैं, कुछ कम जानते हैं। तो अगर इसी तरह से रहा और सारी की सारी चीजें जो है हमने एआई पे डाल दी, तो मेरे ख्याल में ओरिजिनैलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो वो अगर खत्म हो जाती है तो फिर मेरे ख्याल में जो एक खूबसूरती है, यानी एक आठ घंटे की जो ट्रांसमिशन होती है उसमें हर शख्स जो है वो अपनी अपनी मर्जी से एक एक जो घंटे की स्लॉट है उसको पसंद कर रहा होता है, कोई जो है वो मॉर्निंग को, मॉर्निंग टाइम के शो को, कोई जो है वो इवनिंग टाइम के शो को, कोई जो है वो मिड डे के शो को। सो होगा ये कि अगर उसको एक ही तरह की चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सबकी ओरिजिनैलिटी इफेक्ट होगी। तो मेरे ख्याल में अगर हमने इस ओरिजिनैलिटी को कायम रखना है, अगर हमने अपने आप को, अपनी जात को कहीं ना कहीं प्रेजेंटेबल बनाना है, तो उसके लिए हमें फिर अपने आप पे भी रिलाय करना पड़ेगा। और एक चीज जो बड़ी बेसिक हमें याद रखनी है वो ये रखनी है कि एआई को हमने बनाया है, हमें एआई ने नहीं बनाया। सो इतना हमने उस पर रिलाय नहीं करना कि वो ही हमें जो है वो आगे मूव फॉरवर्ड करे। हम कोई भी चीज, अब होता यह है कि हमने किसी से टेक्स्ट मैसेज भी करना, तो वो भी हम उसको बोल के बता रहे होते हैं कि ये भेज दो मुझे, ये इसकी बर्थडे आ गई, तो ये तो आपके अपने इमोशंस कहाँ हैं? यही तो नहीं पता कि आपका किसी अपने बहन भाई से किस कदर मोहब्बत का रिश्ता है, क्या मामला है उसका, उसके साथ। तो वो तो आपको बड़ी अच्छी अंग्रेजी में या बड़ी अच्छी उर्दू में, क्लीस उर्दू में लिख के तो दे देगा, लेकिन मामला ये है कि जो आपके अपने जज्बात हैं, जो आपने उनके साथ बचपन गुजारा है, जो आपने उनके साथ मुश्किल गुजारी हैं, जो आपने उनके साथ टेंशन शेयर किए हैं, वो एआई ने तो नहीं की। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि ठीक है, जरूरत के टाइम आप जरूर यूज करें, और ऑब्वियसली यूज करनी चाहिए, लेकिन उसको इतना हम अपनी डेली लाइफ में ना ले आए कि हमें जो है वो सलाम का जवाब देने के लिए भी जो है वो एआई की जरूरत पड़े, और सलाम मीडिया पर अस्सलाम वालेकुम कहने के लिए एआई हमें
0: जरूरत पड़े। ये बहुत बेहतरीन है कि अपनी जिंदगी में अपने इमोशंस जो हैं वो आप जरूर उनको खत्म मत कीजिए। आप, हम जिस दौर से आए हैं या जिस, जहां हमने क्वालिफिकेशन हमारी है जहां की, वहां पर मकसद हमारा यही था कि हम अपनी एबिलिटीज को लेकर आए, अपने स्किल्स को जो है वो काम में लाए, ना कि ये कि हम हर चीज जो है वो टूल्स पे जो है वो रिलाई करना शुरू कर दें। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है जैन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि देखिये, आप एक कामयाब माशाल्लाह सहाफी भी हैं, कामयाब एक लीडर भी हैं, एक तो ये कि आप हमारी जो है अवाम है, जो नए लोग हैं, उनको किस तरह से कोई मैसेज आप देना चाहें, उनको किस तरह से आप इस फील्ड के लिए पॉजिटिव वे में ला सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड के बारे में यही कहा जाता है कि जब भी रिपोर्टिंग की जाती है, एक जिम्मेदार सहाफी की जिम्मेदारी डेफिनेटली ये है कि अगर वो रिपोर्टिंग करे या बात करे तो कम अज कम उसका कोई एक डिग्निटी को मेनटेन रखे, लेकिन जब भी हम बात करते हैं नेगेटिव व्यूज, तो इससे चाहे वो कोई कम्युनिटी अफेक्ट हो, चाहे कोई कंट्री अफेक्ट हो, दे डोंट केयर। तो इस चीज का जरूर ख्याल जो है वो कैसे रख सकते हैं, और नई जनरेशन जो है वो अगर इस फील्ड में आना चाहे तो कामयाब और जिम्मेदार सहाफत कैसी होनी चाहिए?
1: देखें मरियम, टू बी वेरी फेयर, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे यहाँ एक स्टीरियोटाइप है, या एक मिथ है, या एक गलत बात जो पोर्ट्रे की जाती है वो ये की जाती है कि हम कहते हैं कि जो सच्चा शख्स होता है वो कड़वा होता है। तो मैं इस चीज को बिलीव नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि आपको सच्चा होने के लिए कड़वा होने की जरूरत हरगिज नहीं है। आप अपने रिश्ते बचाएं, अपने रिश्ते मजीद बनाएं, और जो एक एक फ्रेज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, तो आपके जो दोस्त हैं, जो आपके अहलो अयाल हैं, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर आप उनमें पसंदीदा नहीं है तो आप दूसरे लोगों के लिए जितने भी पसंदीदा हों उसका आपको फायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो भी आपके पीआर है, जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनको सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखें और उनको खुश रखें। तो आपने अगर कोई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने अगर कोई खबर देनी है तो आप उसको रिलैक्स मोड में भी दे सकते हैं, आप उसको सॉफ्ट लैंग्वेज में भी, सॉफ्ट स्किल्स यूज करते हुए भी दे सकते हैं, और वही चीज जो है वो आप थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला डाल के आप बहुत सारे लोगों के दरमियान नफरत की वजह बन सकते हैं।
0: Exactly.
1: तो आपकी खबर, आपका कंटेंट, वो हमेशा मोहब्बत का बायस बनना चाहिए, नफरत करें।
0: बिल्कुल, ताकि मीडिया जो है, जो फील्ड है, उसको लोग पॉजिटिव वे में देखें, उसके बारे में लोग ये नेगेटिव कमेंट्स ना दें या नेगेटिव इम्पैक्ट उनके माइंड में ना आए कि मीडिया तो हमेशा हमें डिप्रेशन ही देता है, टेंशन ही देता है, यहाँ खबरें ऐसी आती हैं। जब आप खबरें दें, आप न्यूज करें, तो आप उसके साथ उसका सोल्यूशन भी जो जरूर दें और एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो तमाम दुनिया को दें। बहुत शुक्रिया जैन आपकी इस खूबसूरत और जबरदस्त डिस्कशन का, और उम्मीद है हमारी बहुत सारी वेल विशेज आपके साथ हैं, और अल्लाह सुभान व तआला आपको बहुत ज्यादा तरक्की दें और आप इसी तरह चमकते और जगमगाते रहें। जज़ाकअल्लाह।
8: Across Sudan, starvation is tightening its grip. With rising food prices and widespread malnutrition, 8.7 million people are now facing emergency or famine level hunger. As the conflict intensifies and aid routes narrow, families in Sudan are running out of options and time. The Al Imdad Foundation is delivering life-saving humanitarian aid to those most at risk. Stand with Sudan. Donate online at alimdad.com or call 0861-786-243 for more information.
9: Discover the Africa of your dreams and surround yourself with her spectacular beauty. Relax beneath her serene sunsets and explore wildlife at its natural best. It's where the pride of Africa comes together. The Kwantu Private Game Reserve. Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit kwantu.co.za. The Kwantu Private Game Reserve, the place of gathering.
10: Shimmer, sparkle, captivate. Nothing less than a masterpiece. Droplets of gold inspires precious design. Platinum bursts with intricate freshness. And every pure diamond becomes more than just a girl's best friend. Voda Gold Gem Jewelers, where timeless dreams become a reality. Come to us. We tailor-make designer gold, platinum and diamond jewelry. Trade in or remodel your old gold. Clad yourself with classy name-branded watches. We offer insurance valuation and Visa card calculation. Visit us at 534 Ridge Road, Overport, or call 031-208-9142. Voda Gold Gem Jewelers, manufacturers of fine gold and diamond jewelry.
11: Are you banking with convenience, transparency, and flexibility? With Al Baraka Bank's transactional banking account, you can enjoy convenient everyday banking designed around your needs. Benefit from zero fees on point-of-sale transactions and manage your banking easily through Al Baraka's secure mobile banking app and internet banking platform. From everyday payments to managing your personal or business banking, Al Baraka makes banking simple, transparent, and convenient. Visit albaraka.co.za to learn more. Al Baraka, your partner bank. Al Baraka Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
12: Right now, in lands many of us feel deeply connected to, a mother holds a sick child, worried and fearful, as she knows her nearest hospital has been destroyed. This is the mother we go beyond borders to reach. Doctors Without Borders is there in the world's toughest places. We go where others can't or won't, and we go immediately. When you give to us, we go even further. Visit msf.org.za/sadaqa, that's SADAQAH, and support Doctors Without Borders today. Doctors Without Borders, we go there.
13: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media. Humanity sets the agenda. Listen to something fresh. Listen to Salam Media, your humanitarian broadcaster.
0: Welcome back. It's mid-morning talk with Maryam Hashmi. And with us, our studio guest is Dr. Fahmida Qudus Rabbani. And mashallah, what can I tell you about them? They have a PhD and Wits University. They have achieved their education. And many of their challenges they have also faced. So, let's ask them today, who are people in this field or who are studying and who are going through the process of research, the difficulties that come to them, I hope that ہمیں کوئی ایک اچھی ایڈوائز دے سکے ٹپ بتا سکے اور وہ تمام جو لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ آج کے پروگرام میں آسانی ہو جی ویلکم کرتے ہیں ہم ڈاکٹر فہمیدہ کو السلام علیکم ڈاکٹر فہمیدہ
14: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسی ہیں مس مریم
0: میں بالکل ٹھیک فہمیدہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے آپ نے اپنا وقت نکالا فہمیدہ سیدھی آپ سے بات کروں گی ماشاء اللہ میں یہ چاہوں گی آپ ذرا کوئکلی اپنا انٹروڈکشن اپنے ہمارے لوگوں کو دیں کہ کس سبجیکٹ میں آپ نے کیا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو کہ اگر کوئی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے تو وہ کیا کرے نیکسٹ
14: اچھا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گی کیونکہ ڈائریکٹلی میں جمپ نہیں کروں گی پی ایچ ڈی پہ اینڈ میں بتاتی چلوں کہ میں نے پاکستان سے اپنا ماسٹرز کیا تھا جیوگرافی میں اینڈ اس کے بعد مجھے یہاں پہ اپرچونیٹی ملی الحمدللہ میں نے اپنا ایم ایس کیا انوائرمنٹل اسٹڈیز میں اینڈ نارتھ ویسٹ یونیورسٹی سے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا پی ایچ ڈی کا تو پی ایچ ڈی میں الحمدللہ ایکسیپٹنس آ گئی وٹس یونیورسٹی سے اور میں نے پھر دوبارہ سے الحمدللہ جیوگرافی اور انوائرمنٹل اسٹڈیز کو چوز کیا اور مشکل سفر تھا میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت آسان تھا بٹ یہ کہ آپ کو تھوڑی سی ریزسٹنس دکھانی پڑتی ہے آپ کو تھوڑا سا ڈٹ کے رہنا پڑتا ہے اگر آپ کو شوق ہے اور شوق ہے اور ساتھ میں سپورٹیو آپ کی فیملی بھی ہو تو اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں الحمدللہ سو میں پھر یہی کہوں گی اور ساتھ میں نے سفر میں نے اپنا یہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں ٹیچنگ سے اسٹارٹ کیا سو میں ٹیچر تھی اور کبھی بھی اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ کو اپنی ڈیسٹینیشن نہیں سمجھنا چاہیے
0: اور آپ کی مینٹور میں تھی
14: اور آپ نے میری بہت ہیلپ کی ہے آپ نے مجھے تھامے رکھا آپ نے مجھے بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحمدللہ آپ ایک فرشتے کی طرح سامنے آئی ہر اس پہ اور آپ نے مجھے تھامے رکھا اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ میں اب یہ نہیں کہوں گی کہ آپ نہ ہوتی تو کیا ہوتا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے ہونے سے جو مجھے فائدہ ہوا اور کچھ لوگوں کو وہ پریویلیج نہیں ملتا ہے تو شاید اس وجہ سے تو میں یہاں پہ یہ پوائنٹ بھی کہوں گی کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں آپ کے کسی کا ہاتھ پکڑنے سے ہو سکتا ہے وہ بندہ کہاں تک پہنچ جائے
0: بہترین اور آج آپ اس مقام پر ہیں تو آپ کیا آپ سوچ نہیں سکتی کہ کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں پر دیکھ کر اور یہ اس میں آپ کی بہت زیادہ کوشش شامل ہے کہ ماشاء اللہ آپ گیو اپ نہیں کرتی اور یہ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ اپنے اس سفر کو اینڈ تک آپ پی ایچ ڈی تک لے کر گئی ہیں جی ٹاپک پہ آتے ہیں فہمیدہ سمپل سی بات ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ نے اپنا ریسرچ ٹاپک چوز کرنا کیونکہ سم ٹائم اسٹوڈینٹس کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ جو ان کا ریسرچ ٹاپک ہے وہ صحیح ہے اس کا صحیح جو ہے وہ استعمال ہوگا یا وہ تحقیق کے ریسرچ کے قابل بھی ہے کہ نہیں تو اس میں آپ کیا ایڈوائس کریں گے
14: ایکچولی سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی دلچسپی کس چیز میں ہے
0: بہترین
14: آپ جو ہے اگر آپ سوچ رہے ہو کہ اچھا مجھے یہ چیز کرنی ہے اگر آپ کو مائگرینٹس پہ ریسرچ کرنی ہے اگزامپل میں آپ کو دے دوں گی تاکہ زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے اور اس کو پھر کیا کرنا چاہیے کہ مائگرینٹس کے بارے میں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے اچھا ریسرچر کون ہوتا ہے جو اچھا ریڈر ہوتا ہے تو میں یہی آپ کو کہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں اتنا پڑھیں اور کیونکہ آپ کو اس ٹاپک میں انٹرسٹ ہے تو ظاہری سی بات ہے اوبیسلی آپ کی دلچسپی اس میں ہوگی اور آپ دلچسپی سے جب پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ اچھا ان ایریاز پہ اتنا زیادہ کام ہو چکا ہے کہ آپ کے کام کرنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ جو ہے اس کے بعد اتنا وہ سیچوریشن پوائنٹ آپ کا آ جائے گا پڑھ پڑھ کے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا ये चीज इतने लोगों ने कर ली और अभी स्टिल इस चीज पे काम करना बाकी है, ये कहां से आपको पता चलेगा? जब तक आप किसी का काम पढ़ेंगे नहीं. तो आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उस मकाम तक पहुंचे कि आप वो पॉइंट्स लिखते जाएं. अच्छा, मैं सोच रहा था इस चीज पे काम नहीं हुआ, अचानक से आपके सामने वो चीज आ जाएगी, नहीं उस पर भी हो चुका है. फिर आप सोचे शायद इस तरीके से नहीं हुआ, फिर वो चीज आपके सामने आ जाएगी. अच्छा, नेक्स्ट चीज आप क्या सोचे, आप कहें अच्छा ये मेथड फलां काम जो है किसी ने क्वांटिटेटिव किया, मैं क्वालिटेटिव कर लेता हूँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से. अच्छा ठीक है, वो चीज आपके सामने आ जाती है, अच्छा ये चीज किसी ने नहीं की, नेक्स्ट आप क्या करें, ये चीज साउथ अफ्रीका में हुई है लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुई, ये यूके में हुई है कैनेडा में नहीं हुई, आप फिर ये ज्योग्राफिकल पॉइंट देखना स्टार्ट कर दें. और आप हर तरीके से उसको खंगाल के देखें उस टॉपिक को, किस चीज के बारे में या किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज नहीं हुई है, फिर जाके आप अपने पॉइंट्स लिखते जाएं, तब जाके आपको आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप कह सकें अच्छा मैं जो रिसर्च करने जा रही हूँ ये एक न्यू कंट्रीब्यूशन होगी, मैं एक न्यू नॉलेज क्रिएट करने जा रही हूँ, न्यू नॉलेज में एक एक मतलब कुछ एडेड होगा मेरी तरफ से. तो वो तभी हो सकता है जब आप पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करें रीडिंग से, जितनी रिसर्च करेंगे जितना पढ़ेंगे वही आपको हेल्पफुल होगा कि आप अच्छे से अपना टॉपिक चूज करें.
15: कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए लिटरेचर रिव्यू करना और उसको टाइप करना उसको, कि जितना आपने पढ़ा होगा आप इसको वो करें. और बड़ी खूबसूरत फहमीदा ने बात की है कि समटाइम हम स्कोप के पीछे बहुत भागते हैं कि इसका स्कोप ज्यादा है, इसमें ही हम काम करें, जबकि उसमें ऑलरेडी बहुत काम हो चुका होता है. लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट को देखें और अपने इंटरेस्ट में चाहे उसमें कोई स्कोप नहीं है, लेकिन आप वो जरिया है जो कि उसको जो है बढ़ा सकते हैं और उसको आगे लेकर चल सकते हैं और उसका स्कोप जो है दूसरों के लिए आप जो है वो बना सकते हैं. तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन था कि किस तरह से आप रिसर्च की जाए, अपना लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया जाए. अच्छा, अब हम आगे आते हैं. रिसर्च गैप भी होता है बहुत ज्यादा, वो भी इस फील्ड से रिलेटेड है. फहमीदा, उसके बारे में जरा बताइए कि वो कितना जरूरी है और वो क्या.
14: अच्छा, जब आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि आप डिफरेंट ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, आप देखते हैं अच्छा क्वालिटेटिव हुआ है तो क्वांटिटेटिव नहीं हुआ, आप देखते हैं कि अच्छा किसी ने रूरल एरिया में किया अर्बन में नहीं किया, आपकी इंटरेस्ट है, आप ही अपनी चीज पढ़ते जा रहे हैं, आप वो पॉइंट्स लिखते जाइए. आप हर चीज के बारे में, और जैसा कि आपने अभी कहा कि लिटरेचर रिव्यू इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप पढ़ते जा रहे हो, आपको समटाइम इतनी चीजें रेजोनेट करती हैं कि आपको दिमाग में याद हो जाता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा फलां ने क्या कहा था रूरल एरिया अर्बन एरिया के बारे में, फलां ने जो है वो पेरिफेरल एरियाज और इनर सिटी के बारे में बात की, फलां ने फलां कंट्री और फलां कंट्री का कंपैरिजन दिया. इससे आपके अंदर खुद ही एक जुस्तजू आती जाएगी, खुद ही एक इंटरेस्ट, वो आपका जो टॉपिक था उसको एक शक्ल मिलती जाएगी.
15: बिल्कुल.
14: और आपको पता चलता जाएगा ये चीज जो मैं करना चाह रही हूँ ये वाकई किसी ने नहीं की और मेरी चीज जो है इस लिहाज से डिफरेंट होगी. तो आपको फिर वही पॉइंट के रीडिंग से ही आपको पता चलेगा, जब आप रीडिंग से पॉइंट्स बना के रखेंगे कि अच्छा इस चीज पे इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतना काम हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे गैप आ गया है. जब मैं आपको माइग्रेंट्स की मिसाल देती हूँ तो माइग्रेंट्स पे बहुत काम हो चुका है कि माइग्रेंट्स को मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, माइग्रेंट्स को के बारे में पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, तो माइग्रेंट्स के बारे में मतलब जब वो ट्रेवल करके आते हैं तो किन किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है उन्हें, माइग्रेंट्स को हॉस्पिटल में किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है. और फिर सडनली आप फोकस करते हो, किसी ने ये चीज नोट नहीं की है कि वो हेल्थ को एक्सेस कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं. आप पॉइंट्स खुद ही आपके जहन में आते जाएंगे. आप सोचोगे कि अच्छा हॉस्पिटल तो मौजूद है, माइग्रेंट्स भी मौजूद हैं, सर्विसेज मौजूद हैं, फिर भी क्यों माइग्रेंट शिकायत कर रहे हैं या फिर भी क्यों शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब क्यों विजिबल है कि उनको कुछ सहूलियात मयसर नहीं है. तो आप उस चीज के पीछे दौड़ते हो, अच्छा किसी ने ये रिसर्च क्यों नहीं की, किसी ने ये क्यों नहीं मालूम करना चाहा कि ये सहूलत होने के बावजूद उस तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं या सहूलत उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे. यहां से आप आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आपका गैप जो है आपको पता चलता है. तो आपको पता चलता है मैं इस चीज पे अब काम करूंगा कि सहूलत मौजूद है, मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद हैं, माइग्रेंट्स अवेल कर सकते हैं, तो क्यों नहीं अवेल कर पा रहे. ये देखिए गैप मैंने यहाँ पे आपको बैठे बैठे बता दिया.
15: बिल्कुल हाँ, इस रिसर्च गैप के साथ आप अपने जो है आगे जो है अपने रिसर्च वर्क को कम्प्लीट कर सकते हैं. अच्छा, एक और बात बड़ी है इम्पोर्टेंट कि बहुत सारे बच्चे, बहुत स्टूडेंट्स जो है वो अपने अकेडमिक जर्नल पे ध्यान नहीं देते या उनकी पब्लिकेशन नहीं होती. आप क्या समझती हैं कि मास्टर्स या पीएचडी लेवल पर ये पब्लिकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है?
14: अच्छा, पब्लिकेशंस तो मैं तो कहती हूँ जैसे खातून के लिए जेवर इम्पोर्टेंट होगा, रिसर्चर के लिए पब्लिकेशन इम्पोर्टेंट है. आप जितना मर्जी कुछ किए जा रहे हैं, आप रिसर्च फेलोशिप्स ले रहे हैं, आप ग्रांट्स विन कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं रिसर्च करने के लिए, आपने कितना कुछ कर लिया, लेकिन वो रिसर्च जब जब पढ़ने वाले की तरफ पहुंची नहीं है, वो रिसर्च जब एक बुक शेल्फ में जाके थीसिस बन के पढ़ी हुई है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है. फायदा एक फायदा है, ठीक है, आपको आपने रिसर्च की, आपने इतना एक नॉलेज में कंट्रीब्यूशन, लेकिन वो नॉलेज किसी पढ़ने वाले की तरफ पहुंची नहीं है. तो यहां से आप अंदाजा करें कि पॉलिसी मेकर्स को कैसे पता चलेगा कि आपने क्या तजवीज किया, कैसे पता चलेगा किसी और रीडर को कि ओ ये इतना ज्यादा काम हो चुका है और मैं किसी और चीज के बारे में करूं. तो आपको क्या करना है कि आप आपने पब्लिकेशंस पे बहुत जोर देना है. आपने पब्लिकेशंस इस तरह कीजिए कि जैसे आपका थीसिस है, आपके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो ज्यादातर मास्टर स्टूडेंट्स को ये इल्म ही नहीं होता कि वो अपने थीसिस को या अपने चैप्टर्स को पब्लिश करवा सकते हैं. और थीसिस या मास्टर्स जो है वो एक बुक की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, आप उनको चैप्टर्स की शक्ल में भी पब्लिश करा सकते हैं. और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है आर्टिकल पब्लिकेशन, जो कि वो आपका आप लिखते हो सबसे पहले वो पेपर होता है और जब वो पब्लिश हो जाता है तो वो आर्टिकल बन जाता है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी करना लाजमी था. और ये है कि आपको ट्रिम करने के लिए आपने क्या देखना है कि इस चैप्टर में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स ऐसे थे जो मैंने कहीं और नहीं पढ़े, ये सिर्फ मेरे हैं, ये मैंने चीज इंट्रोड्यूस कराई, ये मैंने चीज जो है ये मैंने अपने रीडर्स को बताई. आप वो पॉइंट्स लेके आप अपने आर्ग्यूमेंट्स पे एक जो है मेन आइडिया आपका होगा उसके ऊपर अपना आप अपना आर्टिकल जो है वो बुनते जाएं, लाइक ये तो बेहतरीन वर्ड होगा कहने के लिए. और फिर आप जो है उसके बाद देखें कि वो एक आर्ग्यूमेंट के आसपास सारी डिस्कशन जा रही है आपकी, आपका लिटरेचर रिव्यू भी उसी पॉइंट को बात करे, आपका मेथड्स भी उसी पॉइंट की बात करे, आपका फाइंडिंग्स ऑब्वियसली उसी पॉइंट की बात करें, और फिर आप उसको अच्छे से उसी पॉइंट को कंक्लूड करो. और ये बहुत मतलब मुख्तसर होता है, आपको 15-16 पेजेस हार्डली चाहिए होते हैं, इस मैक्सिमम जो है वो जा सकता है सम टाइम ये 19 पेजेस तक. और अगर वर्ड्स की बात की जाए तो मिनिमम 6000 से लेके 8000 और 9 मैक्सिमम तक जा सकता है, इंक्लूडिंग रेफरेंसेस. सो आपको इस चीज का ध्यान करना होगा कि आपको बहुत बेहतरीन किस्म के अपने आर्ग्यूमेंट्स को चूज करके ही अपने आर्टिकल को पेपर को आर्टिकल की शक्ल देनी है.
15: जबरदस्त, देखिए कितना कितना आसान हो गया उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि इस प्रोग्राम में आपको सारे टॉपिक जो है वो कवर हो गया. और कितनी आसानी, और सबसे बड़ी बात पे उम्मीद है कि ये कि माशाल्लाह ये बड़ी पॉजिटिव रहती है, और पॉजिटिव वे में कि अगर आपने पढ़ना है, सब कुछ लोगों को पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं होती है किस तरह पढ़ा जाए, लेकिन जब आपकी इंटरेस्ट का टॉपिक होता है ना तो आप उसको जो है मोर एक्सप्लोर करते जाते हैं. इसी तरह हम भी आपको ये कहना चाहेंगे कि ये बहुत वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, और हमारी डिस्कशन इनके साथ जारी रहेगी. वक्त जो है वो वैसे भी बहुत कम रह गया है, तो बहुत हम ज्यादा क्वेश्चन इनसे कर नहीं सकते, लेकिन यह है कि एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है. सो स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया.
16: शिमर, स्पार्कल, कैप्टिवेट, नथिंग लेस देन अ मास्टरपीस. ड्रॉपलेट्स ऑफ गोल्ड इंस्पायर्स प्रेशियस डिजाइन. Platinum bursts with intricate freshness, and every pure diamond becomes more than just a girl's best friend. Voda Gold Gem Jewelers, where timeless dreams become a reality. Come to us. We tailor-make designer gold, platinum, and diamond jewelry. Trade in or remodel your old gold. Clad yourself with classy name-branded watches. We offer insurance valuation and Freeza card calculation. Visit us at 534 Ridge Road, Overport, or call 031-208-9142. Voda Gold Gem Jewelers, manufacturers of fine gold and diamond jewelry.
17: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Sapphire Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184 or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
18: More than 800 million people around the world live in deep poverty, uncertain of where the next meal will come from. For those on the brink of starvation, a food bank means survival, dignity, and hope. Send food. Send kindness. Be the reason a family does not go hungry. Donate now to Islamic Relief.
19: Hey, Gulam.
20: Yeah?
19: Did I return your lawnmower last month?
20: No, bhai, you didn't.
19: Oh, no. Now what'll I do? I wanted to borrow it again, man.
21: With Randri Jewelers, you won't have to borrow.
18: For those on the brink of starvation, a food bank means survival, dignity, and hope. Send food. Send kindness. Be the reason a family does not go hungry. Donate now to Islamic Relief.
19: Hey, Gulam.
20: Yeah?
19: Did I return your lawnmower last month?
20: No, bye.

0: delivering clean water tankers, feeding the hungry, and assisting orphans who have no one left. Let us give Gaza whatever help we can. African Muslims Agency, empowering, educating, inspiring.
1: Listen to something fresh. Listen to Salam Media, your humanitarian broadcaster. Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
2: जी वेलकम बैक करते हैं आपको मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी और बात हो रही है इस वक्त के रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको किस तरीके से किया जा सकता है बेहतरीन रिसर्च जो है वो आप कर सकते हैं और जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं और आपके लिए जो भी डिफिकल्टीज हैं तो वो उसमें ये है कि सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करें और उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते जाएंगे आपके जो स्किल्स जो है वो उससे आगे बढ़ते चले जाएंगे. अच्छा अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मेन क्वेश्चन है खवातीन के लिहाज से मैं फहमीदा से पूछना चाहूंगी कि फहमीदा खासतौर पर जो खवातीन और जो घरेलू खवातीन है जो कि अपनी आला तालीम के लिए तहकीक के लिए खानदान के लिए या दीगर जिम्मेदारियों में तवाजुन बैलेंस कायम करने के लिए जो है ना उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. वो पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन उनकी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि वो उन जिम्मेदारियों में सोचती हैं कि मैनेज नहीं कर सकती. आप उनको क्या मशवरा देंगे और वो किस तरह से इस चीज को बैलेंस करके मैनेज कर सकती हैं?
3: अच्छा आपने कहा कि अगर उनका दिल है पढ़ने का अगर उनको उनके अंदर वो चिंगारी मौजूद है ठीक है अगर वो पढ़ना चाहती हैं सबसे पहली बात यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो करना चाहती हैं. अच्छा मैं भी हाउसवाइफ थी जब मैंने स्टार्ट किया टीचिंग से पहले जो मैं आपको बताना चाहती थी कि अपने मास्टर्स को मैंने कैसे स्टार्ट किया तो मैं हाउसवाइफ थी. मुझे एक शौक था कि मैंने आगे पढ़ना है मेरी वालदा की बहुत ख्वाहिश थी कि मैंने अपनी बेटी को बहुत पढ़ाना है और जैसे ही मुझे वो मौका मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला तो वो एकदम से नहीं मिला था. उससे पहले मैं कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रही थी कहीं पे सुपरवाइजर मौजूद नहीं है कहीं पे मैं लेट हो गई हूँ कहीं पे रिसर्च टॉपिक जो है वो अलाइन नहीं कर रहा सुपरवाइजर से कहीं पे क्या मसला और कभी स्टडी वीजा नहीं आ रहा तो काफी डॉक्यूमेंटेशंस के इश्यूज भी थे. लेकिन वो चिंगारी जो थी ना वो आपके अंदर अगर मौजूद है तो आप डटे रहेंगे आप वो दिखाएंगे परसिवियरेंस कि अच्छा नहीं आप कर सकते हैं.
2: लेकिन फहमीदा आप पे भी तो बहुत जिम्मेदारियां थी ना आपने उनको कैसे मैनेज किया? क्या आपको लगता है कि ये पॉइंट है अगर आप ये मैनेज कर लें तो आपसे सब मैनेज हो जाएगा?
3: अच्छा मैं ये कहूंगी कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा
2: राइट
3: आपको दिखाना पड़ेगा कि वाकई आप ये करते हैं और आपको थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ेगा अपनी स्टडीज को. अगर आप में वो चिंगारी वो एक चीज मौजूद है तो आपने उसको राख नहीं बनने देना आपने उन लोगों के साथ रहना है आपने. अच्छा मैं ये चीज भी कहूंगी कुछ लोग कहते हैं मोटिवेशन अगर मैं किसी को भी मोटिवेशन देती हूँ तो मोटिवेशन में थोड़ी सी हवा दे दूंगी चिंगारी को कि वो चलती रहे वो राख ना बने. आपका काम है उसको वापस जो है वो उसको जलाए रखना. आपने उसको एक जिस शक्ल में देना चाहती हैं उस अपनी मोटिवेशन को या अपनी उस ख्वाहिश को आपने जलाए रखना है और आपने डिसिप्लिन होके दिखाना है. क्योंकि अगर बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे मुस्लिम्स भी हैं दूसरी कम्युनिटी से भी होंगे लेकिन अगर हम देखा जाए तो हमारी 5 नमाजें क्यों हम पे फर्ज की गई हैं? हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने के लिए कि एक थोड़ा सा और कहते हैं अभी नई एक रिसर्च हुई है जिसमें ये पता चला है कि हमारे दिमाग का कुछ एक पोर्शन ऐसा है कि जब आप डिसिप्लिन आपका दिल नहीं भी कर रहा आप उठ रहे हो आपका दिल नहीं भी कर रहा आपको वजू करना है आपको छोड़ और कह रहे हो कि मैंने नमाज के लिए जाना है या मैंने पढ़नी है अभी तो वो ट्रेन हो रहा होता है वो उसको पता चल रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता उसको पता ही नहीं चलता फिर आपको आपको फील ही नहीं होता कि आप एक बोझ फील कर रहे हो किसी चीज स्टडीज का. मैं स्टडीज की बात कर रही हूँ आप खुद बहुत वो चीज करोगे आप अपने काम जल्दी से घर के कर लोगे आप सोचोगे अच्छा इस टाइम पे मेरा बच्चा सो जाता है इस टाइम पे मेरे हस्बैंड जो है वो अपने काम के लिए चले जाते हैं तो मैंने ये घंटा जो है या मैंने ये 2 घंटे या 3 घंटे 30 मिनट मैंने अपनी स्टडीज के लिए डिवोट करने
2: हैं.
3: तो जब आप वो करके दिखाएंगे ना तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ही आसान करता जाएगा. आपने अल्लाह को दिखाना है आपने मेहनत करनी है और दुआ करनी है, यकीन रखना है. यकीन कीजिए अल्लाह ताला आपको वो चीज़ ज़रूर अता करेगा, लेकिन डिवोशन दिखाएं, थोड़ी मेहनत करें और आपने उसके साथ साथ मेहनत के साथ साथ यकीन भी रखना है, लेकिन डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी
2: है. और कितनी खूबसूरत बात कि दीन इस्लाम ने हमें ये सब सिखा दिया है कि नमाज जो है वो हमारे अगर माइंड में है तो हमने अपने आप को डिसिप्लिन करना ही करना है. ये बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल.

0: Listen to something fresh. Listen to Salam Media, your humanitarian broadcaster. Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Meri khuda meri lafzo bayaan mein zahir ho. Isi shikasta o basta zabaan mein zahir ho. Main surkh ru nazar aaun kalam ho ke sakoot. Teri ata meri naam o nishaan mein zahir ho. Ji assalamu alaikum. This is Maryam Hashmi live from Salam Media Johannesburg, and the program named is Mid-Morning Talk with Maryam Hashmi. Jiya, Islam Channel, Salam Media ki special Urdu transmission jo hai, wo chal rahi hai. Aur isme hamari ye koshish hai ki hum tamam dunia se, all over the world, hum jo hai khawateen ko ya jo log is dunia mein bahut sara apna naam kama rahe hain, bahut sari khidmat jo hain, wo sare anjaam de rahe hain, to hamari ek choti si koshish hai ki hum unko jo hai kharaj-e-tehseen pesh kar sakein, unko appreciate kar سکیں اور ان کو یہ پذیرائی مل سکے ناظرین ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش پریشانی یا ضرورت سے گزرا ہوتا ہے کبھی کسی کو مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کبھی ایک صرف مخلصانہ مشورے کی تو کبھی صرف ایسے شخص کی جو اس کی بات سن سکے اور اسے احساس دلا سکے کہ وہ اکیلا نہیں ہے تو یہ جو خیال اور یہ جو فیلنگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے بہت زیادہ ہمیں جو ہے دولت چاہیے وسائل چاہیے یا کچھ اس طرح کے ہمیں فائنینشیل ضروریات جو ہیں وہ ہونی چاہیے کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی کوشش ایک نرم لفظ ایک بر وقت تعاون اور ایک نیک قدم بھی کسی کی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے تو یہ ہماری جو کوشش ہے نا یہ ہمیں ایز اے انڈیویژل کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کی جو مدد ہے وہ ہم کر سکیں اور زندگی جو ہے وہ آسان لوگوں کی بنا سکیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت زبردست جو ہے وہ گیسٹ موجود ہیں اس گیسٹ کے تعارف میں میں جو ہوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں بتانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ بہت ایسے نیک کام دنیا کے لیے کر رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے کر رہی ہیں بہت باہمت ہیں اور بہت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بہت فرینڈلی ہیں دوست خاتون ہیں جو کہ بہت ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہر ٹائم جو ہے وہ کوشاں رہتی ہیں کہ کسی کو کسی چیز کی سے ہیلپ کی ضرورت ہو نہ صرف وہ کمیونٹی کو کمبائن کرتی ہیں کمیونٹی کو جوڑتی ہیں بلکہ وہ چاہتی ہیں کہ دوسرے لوگوں میں بھی ایک میسج جو ہے وہ ان کی طرف سے جائے اور اس میسج کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتی ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا جیسے ہم نے کل بات کی تھی ایک چھوٹا سا دیا ہے جو آپ جلاتے چلے جاتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس دیے میں دیے کی جو روشنی ہے وہ آپ بکھیرتے چلے جاتے ہیں تو ہماری معزز مہمان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لنڈن سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی جو ہے آرگنائزیشن جس کا نام ہے راہ خدمت اور اس کا آغاز کیا کیا سوچ ان کو آئی اور کس طرح کون سے ایسے چیلنجز تھے ظاہر ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو بنانے میں کہیں نہ کہیں آپ کو بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں کبھی فائنینشلی آتی ہیں کبھی آپ کو پرسنل سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ان تمام چیلنجز سے نکل کر آپ ایک اچھی آرگنائزیشن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں آپ دوسروں کے لیے مدد کا ذریعہ بن سکتے ہیں تو ہماری معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سدرا بھٹی اور سدرا بھٹی سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ سدرا بھٹی کو ہم ویلکم کرتے ہیں جی السلام علیکم سدرا
2: وعلیکم السلام
1: کیسی ہیں سدرا آپ بالکل ٹھیک ہیں
2: الحمدللہ بلکہ میں کہنا چاہوں گی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سدرا بھٹی کا سلام
1: وعلیکم السلام
2: امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے رب کائنات سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خوش و خرم آباد رکھے
1: بہت شکریہ ماشاءاللہ یہ آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں دل کو چھو لینے والی جو آواز ہے جو آپ کا انداز ہے وہی ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے خوشی کا باعث ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں آپ کی آواز تو بہت شکریہ سدرا آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام میں جوائن کیا سدرا میں بات کری تھی کہ دیکھیں یہ بڑا ایزی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو نرم دل رکھتے ہیں نرم جذبہ رکھتے ہیں لیکن کچھ کرنا چاہتے ہیں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن کبھی وسائل کبھی آپ کو سپورٹ اور کبھی کوئی ایسی مشکلات جو ہیں وہ آ جاتی ہیں جس سے وہ مدد نہیں کر پاتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں آپ ان لوگوں کے لیے انسپریشن ہیں آپ ان لوگوں کے لیے موٹیویشن ہیں کہ کس طرح اگر آپ کسی کی مدد کرنے کی ٹھان لیں تو آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں جو ہیں وہ فرما دیتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی راہ خدمت آرگنائزیشن کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے آپ نے اس کو کیسے شروع کیا آپ اوور ٹو یو سدرا
2: सबसे पहले मरियम यू आर सच अ ब्रिलियंट होस्ट और जो हमारा सलाम मीडिया थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे एंड इट्स अ ब्रिलियंट शो. मैंने आपका कल भी एपिसोड देखा. You are doing brilliant job, mashallah, mashallah. May Allah bless you and give you a long and healthy life. And now I will start with, I'm so sorry, मुझे थोड़ा सा, I'm not well today. But still, मैंने कहा कि मैं आपके प्रोग्राम में जरूर शिरकत करूँ और जो हमारा राय खिदमत का जो मैसेज है वो सारी दुनिया तक जाना चाहिए.
1: बेहतरीन जी, फरमाइए.
2: मैं अपनी गुफ्तगू का जो आगाज है वो शेर से करूंगी. अपने लिए तो जीते हैं सभी, अपने लिए तो जीते हैं सभी, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना. बस यही हमारी राय खिदमत का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है ना वो ये है. लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल. हम बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये कॉन्सेप्ट है एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम विद एनीवन. यही सोच मेरे भी हमेशा मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है. तो मैं कहती हूँ कि वट एवर नॉलेज आई हैव और जो भी हम अपना टाइम एनर्जी जो दूसरों के लिए कर सके ये हमारे लिए आखिरत में यही काम आएगा. दुनिया में तो आपको पता है ये लाइफ कभी भी एंड हो सकती है लेकिन हमारा अच्छा काम ये सारी जिंदगी याद रखा जाएगा इंशाल्लाह.
1: इंशाल्लाह.
2: नाउ कम बैक टू योर क्वेश्चन के राय खिदमत क्या है, कैसे ये काम कर रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ राय खिदमत ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह. और मुझे मरियम मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरी जो टीम मिली है वो बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह. तो ना सिर्फ हम यूके में काम कर रहे हैं, मेरे साथ ईस्ट लंदन के साथ मेरी बहुत अच्छी लीडर्स हैं. उमे कुलसूम ईस्ट लंदन को रिप्रेजेंट करती हैं. इस तरह हमारे काफी जो लीडर्स ईस्ट लंदन के हैं. फिर अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की तो हर शहर में ऑलमोस्ट हमारे लीडर्स मौजूद हैं. तो हम हर लिहाज से अगर पहले मैं यूके से स्टार्ट करती हूँ कि हम यूके में क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं
1: जी.
2: तो हमारे व्हाट्सएप के काफी ज्यादा ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक के ग्रुप्स हैं और जो फेसबुक का ग्रुप है उसमें हजारों लेडीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और उसको हम वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम टू सपोर्ट देम. जो यहाँ पे परदेश में जो मसला है ना वो लिसनिंग का है, लोगों की बात सुनने वाला ही नहीं कोई होता. तो हमने उनको ये कहा कि हम आपको सहारा बनेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात की जाए, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशंस की बात की जाए. अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो सबको प्रोवाइड कर रहे हैं. शाउट आउट दे रहे हैं बिजनेसेस को कि लेडीज को हम एम्पावर करें कि यू कैन डू एनीथिंग, बिलीव इन योर सेल्फ. Nothing is impossible in this world. Impossible itself says, I am possible. I am possible. बस यही छोटा सा मैसेज मैं अपनी टीम को देती हूँ. आगे मेरी टीम जो है वो माशाल्लाह हमारे पास क्वालिफाइड है सारे. और वो सारे लोगों को कहते हैं कि शाउट आउट फ्री देते हैं कि यस यू कैन डू इट. स्टार्ट करो अपने आप को, हिम्मत करो और ये डिप्रेशन और ये जो लॉन्लीनेस है इस कंट्री में इससे निकलो और अपने आप को जो है हिम्मत पकड़ो एंड यस यू कैन डू इट. और अगर पाकिस्तान की मरियम बात की जाए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आपको पता है आप खुद भी पाकिस्तान से हैं कि कितने नीडी लोग हैं वहां पे. पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह करीम वी आर रनिंग सेवरल प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान. वहां पे वाटर हैंडपम्प की बात की जाए क्योंकि पानी का मसला आपको पता है साफ फिल्टर वाला पानी बहुत इश्यू है. फिर उसके बाद अगर हम बात की जाए बच्चों का स्कूलिंग का तो मुल्तान में हमारा स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह. वहां का लीडर हमारे माशाल्लाह मुल्तान के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. कोट अद्दू में मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह. फैसलाबाद की बात की जाए तो मुफ्ती कारी अब्दुल जब्बार साहब तो वो हमारे लीडर फैसलाबाद से रन कर रहे हैं. तो फैसलाबाद में मदरसा दीनी तालीम. तो मैं यहाँ पे किंजा का नाम लेना चाहूंगी. हमारी जो टीम लीडर पाकिस्तान है उनको हमने ये टाइटल दिया हुआ है किंजा शहजादी साहिबा को बिकॉज शी इज वेरी टैलेंटेड. मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ यूके में लेकिन मैंने आपको जैसे पहले कहा कि मेरे पास अच्छी टीम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह. तो किंजा पाकिस्तान से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लीड कर रही है. यंग टैलेंट को ऊपर लेके आना. अभी हमारा नात का कंपटीशन चल रहा है जिसमें हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप लोग अपनी नात करो, अपने टैलेंट को आगे लेके आओ. थैंक यू, ओवर टू यू मरियम.
1: बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सिद्रा. यही चीजें जो है ना ये मोटिवेशन देती हैं. आपको पता है कि एक शख्स जो है वो लीड करता है और फिर टीम जो है वो उसके पीछे उसको फॉलो करती है. अच्छा, ये एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत सालों से है वैसे, लेकिन मैं पूछना जरूर चाहूंगी, क्योंकि जब आप अपने कंट्री में होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों को आप जाहिरा जानते हैं और समझते हैं, लेकिन आपने जो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्री में, लाइक आपने यूके में स्टार्ट की है, तो उसके लिए कितनी मुश्किल आपको आई होंगी, कितना आपके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ा होगा, और वहां पे आपने अपनी जो टीम खुद ढूंढी है, बनाई है, आपके साथ लोग कनेक्ट हुए हैं, ये तमाम ये इजी टास्क तो नहीं है, क्योंकि हर कोई तो मदद तो करना चाहता है लेकिन उसे पता नहीं है कि वो स्टार्ट कहां से करे.
2: वेरी नाइस क्वेश्चन मरियम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यूके के रूल्स रेगुलेशंस लॉज को फॉलो करना. और मैं यहाँ पे जो हमेशा मेरे जो इंटरव्यूज होते हैं, मैं अपने हस्बैंड का माशाल्लाह नाम जरूर लेती हूँ, मोहम्मद फैसल उस्मानी. तो कहते हैं कि जब भी किसी खातून को, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 माशाल्लाह से बच्चे हैं और बच्चों के साथ छोटे बच्चे हैं और उनके साथ मैं सारी चीजें मैनेज करना, कम्युनिटी वर्क करना, होस्टिंग, नाथवानी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, सारा जो है ये मेरे वालदैन की दुआएं और मेरे हस्बैंड की मोटिवेशन. मेरे बहुत ज्यादा वो मुझे सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अभी भी वो ऑफिस जा रहे थे लेकिन उससे पहले सारा सेटअप किया मेरे लिए, हालांकि लेट हो रहे थे, कहते नहीं मैं तुम्हें सेटअप करके दूंगा. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. और वाकई में एक ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करना ये इट्स वेरी चैलेंजिंग, लेकिन अगेन मैं वही वर्ड यूज करूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छे सपोर्टिंग लोग मिले हैं.
1: अच्छा, ये जो खवातीन है, खवातीन के बारे में कहा जाता है कि खवातीन जो है किसी भी फील्ड में जो है उनको बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, लोग चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो पब्लिक अपीयरेंस हो या पब्लिक प्लेसेस पे भी उनको जाना हो, उसमें जनाब आप बता सकती हैं कि खवातीन का क्या किरदार रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या ये फुली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खवातीन बेस्ड है, जैसे आपने कारी साहब का भी नाम लिया, या फिर जो है इसमें खवातीन को वो मुकाम दिया जाता है या जिस जो वो डिजर्व करती हैं.
2: जज़ाकअल्लाह मरियम. यूके में तो ऑलमोस्ट सारी टीम ही लेडीज की है, जितने भी इवेंट्स होते हैं वो लेडीज के होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन जो पाकिस्तान में, आपको तो सारा पता है, वहाँ चैलेंजिंग सोसाइटी है. अभी सैलाब आया और कितने ज्यादा अफेक्टेड एरियाज थे, तो वहां पे लेडीज की सिक्योरिटी, मैं अपनी टीम को हमेशा कहती हूँ यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी. कभी भी मैं, मरियम अरसलान कराची की टीम लीडर है माशाल्लाह, तो मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि कभी भी अकेले डिसीजन ना लो, हमेशा आप अपने हस्बैंड को, पूरी टीम को, तो फिर हमें बॉयज को वहां सपोर्ट लेना मस्ट हो गया था हमारे लिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैलेंजिंग है. आपको पता है पाकिस्तान की जो सोसाइटी में लेडीज, अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ, पर स्टिल जो ये मेरी टीम मेट्स नहीं है, ये मेरी बहनों से बढ़कर है. तो मैं इनको यही कहती हूँ कि हमेशा, इसीलिए हमने वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर्स जो हैं वो मेंस हैं, और किंजा शहजादी जो हैं वो एज आई सेड अर्लियर माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं.
1: अच्छा सिद्रा, समटाइम ये होता है कि जब भी हम मदद करने का सोचते हैं हमारे माइंड में ये आता है कि माली वसाइल जरूर होने चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करना किसी को जरूरी है. आप क्या समझती हैं कि अगर कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता तो उसके लिए वो कहाँ से स्टार्ट करे, क्या वो एजुकेशन पे, या आप कह लें कि किसी की अच्छी तालीम, जैसे तालीम तो है ही लेकिन वक्त दे दे, तवज्जो दे दे, कोई मशवरा दे दे, क्या ये कोई हेल्प हो सकती है किसी से इन चीजों से?
2: बिल्कुल मरियम, जो हम अपना टाइम दें, एनर्जी दें, जरूरी नहीं है. मैं यही कहती हूँ कि काफी लेडीज ऐसी हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप लोग बस हमारे साथ आ जाओ, हमारा साथ दो, घरों से निकलो. और क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि लेडीज के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम है
1: जी.
2: वो यहाँ पे आके बस वो समझती हैं हम अपने बच्चों को लुक आफ्टर करें, बच्चों को फुल टाइम दें, तो लेकिन हम उनको कहते हैं कि नहीं, आपको अपने लिए भी जीना है. जब मेरे ज्यादातर इवेंट जो होते हैं वो सुबह में होते हैं, और ये जो लेडीज हैं यहाँ पे भी हालात टफ होते जा रहे, सिचुएशन डिफिकल्ट होती जा रही है, लेकिन मैं लेडीज को कहती हूँ कि बिल्कुल आपकी वाली बात की ये सदका जारिया है, अपना कीमती वक्त निकाल के दूसरों को देना, और आप इस तरह भी आप हमारा सपोर्ट कर रहे हो, आप दूसरों को सपोर्ट दे कर रहे हो. और मरियम मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करूंगी कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ये कोशिश की है कि हम सिर्फ माली मदद से नहीं उनकी, सिर्फ उनको पैसे एवरी मंथ भेजते जाए नो. हमने उस तरह तो वो बिल्कुल वो हो जाएंगे ना कि बस पैसे आ रहे, नो. हमने उनको ना रोजगार स्कीम लगा के दी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी बहुत सक्सेसफुल स्कीम है और डिफरेंट शहरों में हमने इनको टी स्टॉल्स और इनको प्रॉपर गवर्नमेंट से हमने इजाजत लेके लगाए हैं,
1: सही, मतलब
2: ताकि ये ना हो कि गवर्नमेंट इनको यहाँ से हटा के दूसरी जगह के या इलीगल एरिया है। तो हमने गवर्नमेंट से, हमारे माशाल्लाह मलिक ताहिर भाई हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे, तो पाकपतन शरीफ से, तो और भी दिगर शहरों से, अगर मैं सबका अपनी टीम का नाम तो लेना चाहती हूँ पर मैं सबको ही अप्रिशिएट करूंगी, यूके और पाकिस्तान टीम को, और मेरी यही दुआ है कि हम इसी तरह प्यार मोहब्बत से जुड़े रहें और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करते रहें।
1: बेहतरीन सिद्रा, और कितनी प्यारी आपने बात की है कि सिर्फ मदद करना फाइनेंशियली जरूरी नहीं है, आपने उनको एक जगह दी, एक प्लेटफॉर्म दिया और उनको एक तरीका कार दिया कि वो किस तरह अपनी अर्निंग्स जो है वो कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि डोंट गिव देम फिश, गिव दम फिश रॉड, कि आप अपनी जो है मदद खुद के तहत आप काम करें, उन्हें मुस्तहकम करें, उन्हें स्टेबल करें। टाइम हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, नाजरीन मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। See you after that. Stay on Salaam Media.
3: We work hard to build our homes, businesses and futures. Protecting them shouldn't mean compromising the values that matter most. ACNE Group of Companies, a Muslim-owned business, offers our short-term diamond insurance covers founded on ethical principles, transparency, integrity and responsible service. This allows us to provide insurance solutions that align with ethical values while maintaining the protection and service standards you expect. To ensure complete peace of mind, all premiums, claims and premium investment funds are managed through designated Sharia-compliant bank accounts, reflecting our ongoing commitment to ethical and responsible financial practices. From your first inquiry to the moment you need to claim, we are committed to providing professional, transparent and reliable support. Choose insurance that reflects your values while giving you confidence and peace of mind. Speak to ACNE Group of Companies today to learn more about our commercial, engineering, professional indemnity and liability diamond insurance covers. Call Rafiq Isaacs on 084-822-6570. ACNE Group of Companies comprises authorized financial services providers under FSP numbers 43281, 45553 and 45915. Products are underwritten by New National Assurance Company Limited, FSP number 2603.
4: Discover the Africa of your dreams and surround yourself with her spectacular beauty. Relax beneath her serene sunsets and explore wildlife at its natural best. It's where the pride of Africa comes together. The Kwantu Private Game Reserve. Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit kwantu.co.za. The Kwantu Private Game Reserve, the place of gathering.
5: Across Sudan, starvation is tightening its grip. With rising food prices and widespread malnutrition, 8.7 million people are now facing emergency or famine-level hunger. As the conflict intensifies and aid routes narrow, families in Sudan are running out of options and time. The Al Imdad Foundation is delivering life-saving humanitarian aid to those most at risk. Stand with Sudan. Donate online at alimdad.com or call 0861-786-243 for more information.
6: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Sapphire Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184 or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
7: It's a new beginning.
0: It's a new era. Salam Media, humanitarian journalism. Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
1: जी वेलकम बैक मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी जी हाँ बात हो रही है आज दूसरों की मदद कैसे की जाए किस तरह से उनसे उनको जो है स्टेबल किया जाए मुस्तहकम किया जाए और किस तरह से पाकिस्तान का नाम अपने मुल्क का नाम अब दुनिया में क्यों किसी भी कोने में बैठकर आप रोशन कर सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा भट्टी सिद्रा भट्टी से हम बात कर रहे हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन राह खिदमत के बारे में अच्छा सिद्रा एक बड़ा अहम क्वेश्चन ये है कि अक्सर आप जब किसी की मदद करते हैं तो क्या होता है कि उस मदद लेने वाले की इज्जत नफ्स भी मजरूह होती है ये कुछ इस तरह कोई ऐसी टिप बताएं जैसे जो लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर वे से वो उनकी मदद भी कर सकें और जिसकी कर रहे हैं उसको ये फील भी ना हो कि उसके उसको जो है ना लो फील कराया जा रहा है जरा इस पे रोशनी डालें
2: मरियम बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आस्क किया जाता है और वैसे तो इस्लाम में ये है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि तुमने किसी की मदद की है तो अगर हम उसकी इज्जत नफ्स को उसका ख्याल रखेंगे सफेद पोश का तो इट्स सो गुड इन इस्लाम बट हम जो हैं अब मैं आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बताती हूँ कि हम कैसे काम करें हमारे पास जो सारी एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पास केस आते हैं हमारे लीडर्स उनको वेरीफाइड करते हैं और यस वी डू आस्क देम कि हम आपको क्योंकि आपको पता है एक एक पैनी हमारे पास अमानत होती है हम उनसे जरूर कहते हैं कि आप हमें वीडियो बना के दें लेकिन ताकि हम बताएं कि आपकी अमानत हकदार तक पहुंची है लेकिन हम उनकी प्राइवेसी का कैसे ख्याल रखते हैं कि हम उनकी जो जो हमें फॉर एग्जांपल हम उनसे परमिशन लेते हैं पहली चीज और ज्यादातर ये होता है कि हम उनका फेस ही नहीं दिखाते हम उनके सिर्फ हैंड्स को दिखा रहे होते हैं कि हमारे एक या उनकी आवाज सिर्फ रिकॉर्ड कर देते हैं तो जैसे हमने राशन पैक्स दिए तो ख्वातीन की सिर्फ आवाज यूज हुई थी तो ये इसलिए था कि ताकि हम मोटिवेट करें अदर्स को कि आप लोग भी एक अच्छा काम हो रहा है उसमें हमारा साथ दें लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह जहां पे वो बिल्कुल भी वो नहीं चाहते थे कि उनकी पिक्चर वीडियोस कहीं पे भी आए तो हमने उनकी प्राइवेसी को मलूजे खातिर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है और बस हम एज ए एविडेंस स्लिप कि आपको मनी रिसीव हो गई है आप एक मैसेज कर दें क्योंकि हमें भी अपने आप को लॉस को कवर करना पड़ता है क्योंकि ये यूके यहाँ पे एक एक एविडेंस सबमिट होता है कि हमने आपने एक आपके पास जो रकम आई थी आपने वो कहाँ यूज की है तो फिर हमने अपने आप को भी इस तरह कवर किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह
1: अच्छा सिद्रा माशाल्लाह ये भी मैं बताना चाहूंगी अपनी ऑडियंस को भी अपने लिसनर्स को भी कि माशाल्लाह आप इलेक्शंस भी में भी आपने पार्टिसिपेट किया है आप डेफिनेटली ये कोई बात नहीं है हर बंदा की विनिंग ही हो तो आप खुद की जो पर्सनैलिटी है ना यही बहुत बात है कि आप में इतना करेज है कि आपने उन इलेक्शंस में जो है आप स्टैंड किया काउंसलर का इलेक्शन था आप उसके बारे में जरा रोशनी डालेंगी कि कैसी कैंपेन थी आपकी आपके लिए लर्निंग लेसन उस कैंपेन से क्या था
2: मरियम बिल्कुल मैं एलम पार्क हमारा ईस्ट लंदन की तरफ एक एरिया है वहां की तरफ से अपनी मार्गरेट जो हमारी एमपी है आई लाइक हर सो मच शी इज डूइंग ब्रिलियंट वर्क माशाल्लाह एंड शी इज द वन जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है एनकरेज करती है मैडम मेयर और उन्होंने मुझे कहा था कि सिद्रा तुम 10 साल से लेबर से हो और तुम जस्ट आओ इस तरफ आओ स्टेप लो तो मुझे जो इस तरफ किया गया था एलम पार्क से नॉमिनेट और अगर तो मुझे आपको पता है यहाँ पे सारे एरियाज थोड़े से चैलेंजिंग भी हैं जहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमें सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो इसलिए मुझे कहा गया था कि आप ज्यादातर जो और एरियाज हैं वहां पे आके हमारी हेल्प करें तो लेकिन ऑन द अदर हैंड ये आपके लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है लर्निंग है आप सिस्टम में आए चीजें देखें लर्न करें ग्रो करें तो दैट्स व्हाई मैंने उनको यस कहा था अल्हम्दुलिल्लाह और मेरा रिस्पांस बहुत ग्रेट आया है अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह आई एम सो एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड कि मैं फ्यूचर में अच्छा और खुलकर कैंपेन करूंगी ओपनली and then we can achieve more aims and objectives.
1: Zabardast. Yahi baat hai ki aap zindagi mein har stage par kuch na kuch seekhte hain aur seekh kar aapko wo ek stage aati hai ki aapko wo kahin na kahin pahuncha deti hai. Isi tarah ye bahut main bahut impressed thi aur mujhe ye bada acha laga ki hamare jab log aise nominate hote hain select hote hain to phir jo hai na badi badi achhi feeling aati hai bada proud moment hota hai. Acha Isi tarah last jo hai few minutes jo hai hamare program ke segment ke chal rahe hain aapke sath main aapse puchna chahungi aapke future plans rahe khidmat ke aur ye bhi puchna chahungi mashallah aapne itna kaam kiya aap kya samajhti hain ki ek cheez wo reh gayi hai jo main zarur karna chahungi aur rahe khidmat organization ka naam jo hai wo roshan karna chahungi bataiye
2: Maryam main jo hai na pehle to ek sher jo hamesha mere dimag mein piche chal raha hota hai wo zarur padhungi tamanna hai kuch diniyon milli kaam kar jaun tamanna hai kuch diniyon milli काम कर जाऊं मोहब्बत और अखुवत का पैगाम आम कर जाऊं तो सो बातों की एक बात मोहब्बत बांटेंगे पॉजिटिविटी बहुत अहम करती है किरदार पॉजिटिव रहें और नेगेटिविटी को अपने अंदर ना लाने दें और खुशियां बांटें वही बात अगेन कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल अपनी तरफ से 100% करें बाकी अल्लाह की जात غفور الرحیم ہے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابیاں دے گا کبھی مایوس نہ ہو تھوڑے سے چیزیں مشکلات ہوتی ہیں شروع میں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سٹیپ لیں ہمت کریں اور آپ کر جائیں گے اور ہمارے فیوچر پلانز رائے خدمت کے الحمدللہ میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں اور مجھے رات کو نیند سکون سے آتی ہے الحمدللہ اور میں بالکل یہ نہیں چاہتی کہ میں راتوں رات بہت ہی اوپر چلی جاؤں نو میں بیبی سٹیپس لے کے ایسے چاہتی ہوں کہ میرا ضمیر مطمئن ہو اور میری ٹیم سیٹسفائیڈ ہو اور ہم سب آرام سے کام کریں لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں ہمارے سارے پروجیکٹس جو ہم چاہتے تھے الحمدللہ وہ سارے قربانی کا پروجیکٹ راشن پیکس رمضان کی بات کی جائے اسکول کی بات کی جائے اور دینی دنیاوی تعلیم کی بات کی جائے بچوں کی کانفیڈنس بلڈنگز کی بات کی جائے وومن امپاورمنٹ کی بات کی الحمدللہ وی آر سیٹسفائیڈ وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ اور الحمدللہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ عزتیں دے رہا ہے دعا یہی ہے کہ آخرت میں بھی یہ چیزیں ہمارے کام آ جائیں انشاءاللہ
1: بہترین سدرا بہترین آپ کا میسج تھا اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ضرور انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گی اور لوگوں کے لیے آپ راہ ہدایت بندی چلی جائیں گی بہت شکریہ سدرا آپ کی اس خوبصورت ساتھ کا اس خوبصورت بات کا جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می تھینکس اسلام میڈیا ٹیک کیئر Have a very nice day.
1: فی امان اللہ جزاک اللہ جی یہ تھی ہمارے ساتھ سدرا بھٹی اور ان کے ساتھ مل کر ضرور آپ کو اچھا لگا ہوگا کیونکہ ان کی جو خدمات ہیں وہ انسانیت کی خدمت جو ہے وہ یہ کر رہی ہیں اور میرے خیال میں کہ اس سے بہترین کام دنیا میں کوئی نہیں ہے دنیا کیا آخرت میں کوئی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ان کے مقصد میں کامیاب کرے اور ان جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑ جائیں اور دنیا میں جہاں جہاں ہیں وہ اپنی طور پر لوگوں کی مدد انسانیت کی خدمت کر سکیں جی وقت ہوا جاتا ہے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہم آئیں گے اپنے دوسرے گیسٹ کے ساتھ ان کے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ جو ہے بہت سارے پیرنٹس کو کنیکٹ کرے گا کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں سوشل میڈیا ہینڈلنگ کی کس طرح سوشل میڈیا کو ہینڈل کیا جائے بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ اور خود آپ کی پرائیویسی کتنی امپورٹنٹ ہے اس پہ ہم آج بات کریں گے ہمارے ساتھ نیکسٹ گیسٹ موجود ہوں گی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اسٹے ٹیونڈ آن سلام میڈیا
7: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine, and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people, and tourists with its four-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach, and other amenities, your stay will be truly unforgettable as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415 or visit www.albaytlodge.co.za.
8: Dad, these Fry Max chips are so tasty.
9: Wow, that really takes me back.
8: My dad bought me a Frimax Chips every day after school. They were my favorite when I was your age as well. Quality is at the very heart of what we do, and that's why we ensure that every Frimax packet is filled with the beautiful goodness and flavor-packed taste that you've come to expect from us since 1982. Frimax, from generation to generation.
9: Gaza needs your support more than ever. Homes have been shattered, and families have lost everything. With your support, our teams are delivering clean water tankers, feeding the hungry, and assisting orphans who have no one left. Let us give Gaza whatever help we can. African Muslims Agency, empowering, educating, inspiring.
10: Are you banking with convenience, transparency, and flexibility? With Al Baraka Bank's transactional banking account, you can enjoy convenient everyday banking designed around your needs. Benefit from zero fees on point-of-sale transactions and manage your banking easily through Al Baraka's secure mobile banking app and internet banking platform. From everyday payments to managing your personal or business banking, Al Baraka makes banking simple, transparent, and convenient. Visit albaraka.co.za to learn more. Al Baraka, your partner bank. Al Baraka Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
11: Right now, in lands many of us feel deeply connected to, a mother holds a sick child, worried and fearful, as she knows her nearest hospital has been destroyed. This is the mother we go beyond borders to reach. Doctors Without Borders is there in the world's toughest places. We go where others can't or won't, and we go immediately. When you give to us, we go even further. Visit msf.org.za/sadaqa, that's SADAQAH, and support Doctors Without Borders today. Doctors Without Borders, we go there.
0: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media. Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
1: जी, मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी, मैं हूं आपके साथ. और जैसे कि आप जानते हैं कि सलाम मीडिया की उर्दू ट्रांसमिशन जो है, स्पेशल एडिशन जो है, वो चल रहा है. और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम हाशमी, और मेरी कोशिश यही है कि हम जो है ऐसी गेस्ट आपके प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम में लेकर आए कि जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, कुछ ना कुछ जो है हम उनसे नॉलेज जो है वो गेन कर सके. हमारे साथ हमारी दूसरी गेस्ट, बहुत प्यारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और सॉलिसिटर हैं, माशाल्लाह लॉ को बहुत अच्छे से जानती हैं. और मैं क्या कहूँ उनके बारे में, वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है. और यही है कि आप उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, और आपको पता लगेगा कितनी माशाल्लाह उनमें स्किल है, कितनी माशाल्लाह उनमें जो है उनको नॉलेज है, और कितना ज़्यादा उनसे बात करके आपको आसानी होती है. अगर आप किसी जगह फंस गए हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर आपके जो है माइंड में, या आपको कोई लीगल चीज़ें एडवाइस करने वाला नहीं है, तो आई थिंक वो जो है बहुत अच्छा अपना काम कर रही हैं. जहां पर हैं वो बहुत अच्छे से लोगों को हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे से केसेस को हैंडल करते हैं. तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी मिसेज रोमाना कौसर. आइए अपने प्रोग्राम में उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम रोमाना.
12: मरियम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी.
1: कैसी हैं आप? ठीक है रोमाना?
12: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. रोमाना बात हो रही है यूके की. यूके का वेदर आज कैसा है?
12: आज माशाल्लाह बहुत बहुत दिनों के बाद आई थिंक आज बारिश हो रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे.
1: जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा रुमाना, बात आज का जो टॉपिक है, जैसे आपको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बड़े लोगों के दिलों को छू जाने वाला ये टॉपिक है, क्योंकि जाहिर है सोशल मीडिया का इस्तेमाल छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग कर रहे हैं. लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस बात का, वो ये है कि अंदाजा नहीं है कि कौन सी चीजें प्राइवेट होनी चाहिए, कौन सी चीज जो है ना वो आपकी बाहर नहीं आनी चाहिए, या आपके पास पर्सनल, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या पर्सनल चीजें. हम समटाइम ख्याल नहीं करते, बहुत सारी चीजें हम अग्री कर देते हैं विदाउट रीडिंग एनीथिंग. और ये आप जरा इस पे रोशनी डालें कि कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी चीज को साइन अप कर रहे हैं, या आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसको उसकी नॉलेज होना कितना जरूरी है. जरा इस पे रोशनी डालिए, बताइएगा.
12: जी डेफिनेटली ये बहुत बहुत जरूरी है कि कोई भी प्लेटफॉर्म आप साइन अप कर रहे हैं, यू नो, किसी भी एज ग्रुप में आप हो, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उनका बैकग्राउंड, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करें, उनकी हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर रहे हैं या पिक्चर सेंड कर रहे हैं, क्या वो स्ट्रीम्ड है, आ गई यू नो आपकी वो इंफॉर्मेशन वो डेटा रखते हैं कि नहीं. फेसबुक पे भी ये टॉपिक रेज हुआ था एंड जो भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे इस पे भी रेज हुआ था. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपने कहा कि जो जब हम साइन अप करते हैं उसमें बस रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन पढ़ता है, इतने डिटेल्स में कोई भी नहीं जाता. एंड अगर कोई पढ़ भी लेगा उसमें इतनी उनको शायद नॉलेज ना हो कि एग्जैक्टली कोई भी क्लोज क्या कह रहा है, कि वो आपकी इंफॉर्मेशन रिटेन करेंगे जो आप डिटेल्स दे रहे हैं या जो आप फ्यूचर में शेयर करेंगे, क्या वो डेटा रिटेन होगा. आई मीन नॉर्मली आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पे, मतलब एवरीथिंग यू नो, इट्स हार्ड टू कंट्रोल कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं सोशल मीडिया को एंड कौन से प्लेटफॉर्म्स कौन सी इंफॉर्मेशन आपके आपकी यूज कर सकते हैं या रिटेन करते हैं.
1: सही. अच्छा, कौन सी चीजें जो है हम पोस्ट कर सकते हैं हमारे लिए सेफ है, जैसे कि पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, उनसे पहले कंसेंट जरूरी है, इजाजत जरूरी है, या हम जो है उसको एज इट इज पोस्ट कर सकते हैं?
12: आई मीन आजकल बिकॉज यू नो सोशल मीडिया सच अ लार्ज प्लेटफॉर्म एंड ये नहीं कि कोई एक ऐप, इट्स लाइक एवरी यू नो बहुत सारी सोशल मीडिया एप्स है. कुछ लोग यूज करते हैं ऑब्वियसली पॉजिटिव वे, अगर हम देखें तो यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए, आपको न्यूज अपडेट्स देने के लिए और कोई भी बिजनेस प्रमोट करने के लिए, तो शॉपिंग के लिए सब यूज करते हैं. तो पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो इट्स गुड टू शेयर कि आप चीजें शेयर करें, लोगों को अवेयरनेस मिलती है, लोगों को नॉलेज मिलती है. सो ये मतलब इट्स इन अ गुड वे, बट आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि आप क्या चीज सोशल मीडिया पर शेयर करना चाह रहे हैं. बिकॉज वंस जब आप शेयर करते हैं इट बिकम्स पब्लिक. अगर आपने उस पर यू नो ऑप्शंस उस पर रखे कि आपकी प्रोफाइल पब्लिक है तो वहां से तो कोई भी वो चीज यूज कर सकता है, फोटोज या आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हैं उस पर कोई भी पिकअप करके उसको यूज कर सकता है. लोग शेयर करते हैं, लोग फॉरवर्ड करते हैं, स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, तो ये सारा यू नो ऑब्वियसली यू कांट कंट्रोल दैट. तो ये यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं सोशल मीडिया को.
1: सही. अच्छा, ये जो आपने जैसे बात की है पब्लिक की, कि इसका मतलब होता है फ्री टू यूज, कि आप किसी की पिक्चर या किसी का प्रोफाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि जहां पर फिर भी अगर आप इनकी फ्री टू यूज या पब्लिक चीजों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी वो परमिशन लेनी जरूरी है?
12: ऐसा सच नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे. अगर आप देखें अगर किसी की प्रोफाइल, फॉर एग्जांपल मेरी प्रोफाइल अगर पब्लिक है और मैं कोई भी इमेज शेयर करती हूँ, तो द फैक्ट आई मेड इट पब्लिक किसी को मैं स्टॉक नहीं कर सकती. यू नो आई वुडंट नो कि किसने स्क्रीनशॉट लिया है, किसने फॉरवर्ड किया, किसको आगे किस कहाँ पे लगाई है, मैं भी अपने प्रोफाइल पे शेयर किया है. सो उसमें कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है.
1: तो आप समझती हैं कि कंट्रोल होना चाहिए?
12: इसका ये है सोशल मीडिया इतना वो इट्स सो फास्ट कि आप इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते. यू नो अगर मैंने कुछ पब्लिक डाला है देन anyone has the right to take a screenshot and share
1: exactly.
12: it. अब मैं कैसे कंट्रोल करूंगी? I would not know.
1: और बहुत ज्यादा ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, और मेरा ख्याल है ये भी बम्बार्डमेंट लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि हमें बार बार नोटिफाई हो रहा है कि ये जब हमने चीज पब्लिक कर दी, ये भी बड़ा इजी है इसको अगर उन्होंने किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने किस तरीके से अपनी चीजों को जो है यूज करना है, अपनी पिक्चर्स अपनी वीडियोज को जो है उनकी प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करना. अच्छा रोमाना, बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी की, यानी कि आप समझते हैं कि एक आम इंसान उसके लिए ये कितना समझना जरूरी है कि उसके सोशल मीडिया पर बुनियादी हकूक क्या है, बेसिक राइट्स क्या है, क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना इतना ही जरूरी है? इसके लिए वर्कशॉप्स वगैरह होनी चाहिए?
12: डेफिनेटली होनी चाहिए वर्कशॉप्स स्पेशली जो ओल्डर जनरेशन है जो शायद सोशल मीडिया आजकल यूज करते हैं, मे बी अभी तक सीख रहे हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि उनके राइट्स क्या है, उनको चीजें कैसे यूज करनी है. समटाइम्स यू नो किसी ने कभी कोई ऐप यूज नहीं किया हो, मे बी वो कुछ पोस्ट कर दे यू नो अपनी पर्सनल पिक्चर्स, शायद उनको नहीं लाइक इवन बच्चों की भी पोस्ट कर देते, उनको नहीं पता होता कि ये लाइव जा रही है या पब्लिक में है एंड कोई भी इसको मिस यूज कर सकता है, इसको कॉपी कर सकता है. तो उनके लिए वर्कशॉप्स होनी बहुत जरूरी. मैं समझती हूँ कि हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए एंड इसके ऊपर आई बिलीव यू नो जहाँ पे मैं रहती हूँ लोकली वी डू प्रोवाइड दैट सर्विसेज. वर्कशॉप्स होते हैं इसको सिखाने के लिए भी, यूज करने के लिए भी एंड उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी कि आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं कोई भी ऐसी सिचुएशन.
1: सही. जी जी जी रोमाना, ये जो फेक अकाउंट्स बनते हैं तो इस पे लीगल एक्शंस क्या लेना चाहिए अगर किसी के फेक अकाउंट्स बन जाए या कोई भी आइडेंटिटी आपकी लीक हो जाए, तो उस पे आपके राइट्स क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके अलावा क्या कर सकते हैं?
12: जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा. इसमें बहुत सारे आजकल ऐसे हो रहे हैं क्योंकि एज अ सोलिसिटर हम जैसे डिफेमेशन केस, अगर किसी ने कुछ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आपकी पब्लिक पब्लिसाइज की है, कहीं भी किसी भी मीडिया पोस्ट पे डाली है, आप उसको स्टॉप कर सकते हैं. आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं. यू कैन गेट एन इंजंक्शन कि आप उस आइटम को, उस पोस्ट को रिमूव करें. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है कि जो एक्चुअल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपने उनको रिपोर्ट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल किसी ने सोशल मीडिया पर कोई फेक आईडी बना के आपकी कोई पिक्चर या इंफॉर्मेशन पोस्ट की है, तो आप फेसबुक के ऊपर उनकी सेटिंग्स में इंफॉर्मेशन होती है कि आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं अगेंस्ट दैट पोस्ट. तो फर्स्ट स्टेप आपने वो लेना होता है एंड आप फेसबुक को एक्सप्लेन करना होता है कि आप चाह रहे हैं कि वो आइटम या पिक्चर रिमूव हो जाए. सो जब वो रिमूव भी हो जाती है, अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है एंड अगर रिमूव नहीं होती, फॉर एग्जांपल, आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं. आपको कोर्ट के थ्रू आप लीगल एक्शन ले सकते हैं. आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंजंक्शन कि वो चीज रिमूव की जाए. अब हमने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं कि वो अब मतलब आपको कोर्ट में भी जाके एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि आपको कैसे ये चीज अफेक्ट कर रही है. यू नो, आपकी कोई प्राइवेसी या कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन लीक हुई है जिसको आप स्टॉप करना चाह रहे हैं. समटाइम्स ऐसी इमेजेस भी होती हैं जिससे लोग अपसेट हो जाएं या यू नो मे बी कोई इंसिडेंट हुआ हो और किसी ने कोई, जैसे फॉर एग्जांपल एन आर्ग्यूमेंट ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ वायलेंस हुआ हो और किसी ने वो पोस्ट कर दी है, चीजें शेयर की हैं, उसके अगेंस्ट भी आप एक्शन ले सकते हैं.
1: सही. अच्छा रोमाना, एक और बड़ा अहम क्वेश्चन ये आपने जैसे बात की है कि हम पोस्ट डिलीट कर देते हैं तो हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, तो क्या ये ट्रू है, वो चीज वहां से डिलीट हो जाती है कि नहीं होती?
12: अनफॉर्चुनेटली नहीं होती. आप ऐप पे अगर देखें या कहीं भी किसी ने पोस्ट की हो, वहां से वो डिलीट चीज हो जाएगी, लेकिन एक्सटर्नली किसी ने कहाँ पे और कहीं पे डाली है, अपने ही सोशल मीडिया, अपनी प्राइवेट प्रोफाइल पे डाली है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. इट्स सच अ ट्रेंड के लोग स्क्रीनशॉट्स लेते हैं. तो अगर किसी ने कोई चीज डाली है जिसके अगेंस्ट आप क्लेम करें कि उसको रिमूव किया जाए, हो सकता है उस प्लेटफॉर्म पे वो रिमूव हो जाए, लेकिन उसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो कहीं और उन्होंने शेयर किए होंगे अपने व्हाट्सएप पे, प्राइवेट, यू नो, प्राइवेट आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं. एंड कितने लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे. अब जैसे कोई वीडियो वायरल हो जाती है, इट्स एवरीवेयर, यू नो, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम,
1: इवन यू डिलीट इट, बट इट्स एवरीवेयर. इट इज ट्रू,
12: इट्स एवरीवेयर. यस, यू कांट कंट्रोल दैट. इवन द कोर्ट्स कैन नॉट कंट्रोल दैट कि हर जगह से आप रिमूव करें.
1: सही. अच्छा, हम जो पर्सनल डाटा, अपनी लोकेशन, अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह, ये जब हम अपनी ज़ाहिर एवरीडे सब लोग शेयर करते हैं, तो हमें ये कोई ऐसा टूल नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हमें पता चले कि हमारा डाटा कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, या अगर कोई पर्सनली कलेक्ट कर रहा है तो हमें कोई नोटिफिकेशन आ जाए या कुछ ऐसा? क्या ये जब ये एप्स बनाते हैं तो इनमें ये ऐसी चीज़ें क्यों नहीं डालते, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों इसमें ऐड नहीं होता है? आप क्या समझते हैं इसकी ज़रूरत है?
12: हर सॉफ्टवेयर में नहीं होता ये कि आप ट्रैक कर सकें कि कौन सी इंफॉर्मेशन इनको ले रही है, लेकिन किसी भी ऐप में अगर आप देखें उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं, उनमें ये क्लोज होता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इट्स देयर प्रॉपर्टी कि आप उनके ऐप पे डाल रहे हैं, बट दे कांट मिसयूज इट ऑब्वियसली, लेकिन उनके कंट्रोल में होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ चीज डालूँ देन दे कैन कंट्रोल कि अगर मुझसे वो कहे कि ये दिस इज ऑफेंसिव, आपको रिमूव करना है. अब एग्जाम्पल आप लें टिकटॉक पे, अगर कोई भी चीज टिकटॉक पे आप डाल रहे हैं, वेदर आपकी प्रोफाइल पब्लिक है या नहीं, टिकटॉक आपको स्टॉप कर सकता है ये चीज डालने से अगर वो आप उनके कंडीशंस ब्रीच कर रहे हैं. इन द सेम वे इट मीन्स के टिकटॉक ऐप जो है वो आपकी वीडियोज जो भी आप डाल रहे हैं वो रखते हैं उनका रिपोर्ट, उनके पास होता है. दे आर रिव्यूइंग व्हाट यू पुट डाउन एंड दे कैन आस्क यू टू रिमूव इट एंड दे कैन डिलीट इट देयरसेल्फ. सो इसमें आई थिंक डिफरेंट एप्स के डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, तो कोई भी आप यूज करने से पहले आपको उनके रेगुलेशंस डेफिनेट करने चाहिए.
1: अच्छा, ये जो बच्चे हैं, आजकल बच्चे भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी एप्स हैं जिसपे वो बात भी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ये क्या ये सेफ है और क्या ये यूज होना चाहिए?
12: आई थिंक विद सोशल मीडिया एंड एप्स, अगर आप बच्चों के हिसाब से अगर देखें, देयर्स टू साइड्स टू इट. एक तो एक पॉजिटिव साइड है कि सोशल मीडिया से آپ چیزیں سیکھ سکتے ہیں, آپ کی نالج انکریز ہو سکتی ہے, آپ لرن کر سکتے آن لائن, آپ ریسرچ کر سکتے آن لائن. سو وہ ایک اچھا پلیٹ فارم بچوں کو ملا ہوا ہے کہ یو نو جیسے اگر کسی نے کوئی پوسٹ ورک یا کچھ کرنا ہے تو اس پہ وہ ریسرچ کر کے ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں. پیپل یوز چلڈرن یوز اٹ ان اے پازیٹیو وے, لیکن اگر آپ نیگیٹو سائڈ دیکھیں, سوشل میڈیا از بینگ مس یوزڈ بائی چلڈرن, یو نو, اینڈ اٹس افیکٹنگ دیم, اٹس افیکٹنگ دیئر ویل بینگ. بہت سارے انسیڈنٹس ہم نے ایسے دیکھے کہ بچوں نے مس یوز کیا ہے نا, ان کو لائک فار ایگزامپل گرومنگ کا شکار ہوتے ہیں, ڈفرنٹ تھنگس, یو نو. اس میں پیرنٹس شوڈ ہیو اے کنٹرول کہ ان کے بچے کیا یوز کر رہے, کس ایکسٹینٹ تک یوز کر رہے.
1: جی پیرنٹل ریسپانسبلٹی, جی پیرنٹل ریسپانسبلٹیز پہ انشاءاللہ ہم اس بریک کے بعد بات کریں گے. ٹائم ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ آن سلام میڈیا.
13: Tonight, a child in a shack will try to sleep through the cold. No heating, no insulation, just thin walls and a biting cold. African Muslims Agency is on the ground, reaching families in informal settlements across South Africa with blankets and winter essentials. Help us spread warmth this winter. For 180 Rand, give a blanket. For 360 Rand, a full winter pack. One gift, one less night in the cold. Africa Muslims Agency. Empowering, educating, inspiring.
14: You South African, of course. You anxious about the future. We've got you covered. Build on your wealth portfolio with Randri Jewelers Gold Coin Exchange. Visit us at 151 Stephen Dlamini Road, Musgrave, Durban, or call us on 031-202-4700 for more information. Randri Jewelers Gold Coin Exchange, your passport to gold investment.
15: Valleys Motor Spares. We supply motor spares and accessories for all makes and models of motor cars, LDVs, buckies, trucks and earth moving equipment. We deliver on time, every time. Please contact us via WhatsApp on 014-592-0925 or call 014-592-0925 or visit 28 Zenderling Street, Rustenburg. Remember the name, Valleys Motor Spares.
16: You know, it's a wonder how kids get anything done these days. With all the distractions, when do they even get time to study? As a mother, all I can really do is make sure they have all they need to perform at their best. That's why I choose to include Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil with every meal I make. Naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether I'm cooking, frying or baking, I know every dish will be a wholesome one. Sunfoil. Now we're cooking.
17: When disaster strikes, families lose everything in an instant. Homes destroyed, communities displaced. Hope fades into uncertainty. Our Global Emergency Fund ensures we respond without delay, delivering food, water, shelter, and healthcare to families in need. To support our Global Emergency Fund, visit islamicrelief.org.za.
18: Listen to something fresh. Listen to Salam Media. It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian.
17: We respond without delay, delivering food, water, shelter, and healthcare to families in need. To support our Global Emergency Fund, visit islamicrelief.org.za.
18: Listen to something fresh. Listen to Salam Media. It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism.

0: सिस्टम का बहुत ज्यादा रुझान बढ़ गया. जाहिर सी बात है कि उनकी फिर बच्चों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहे एज अ स्कूल आप स्टोर करते हैं, तो उसमें वालदेन का कितना राइट है, कितना हक है कि वो अपने बच्चों की इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकें कि कितने साल तक उनके बच्चों की इन्फॉर्मेशन उस स्कूल के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड रहेगी.
1: जी डेफिनेटली पेरेंट्स का फुल राइट होता है, स्पेशली एजुकेशन के हिसाब से पेरेंट्स हैव द राइट के वो स्कूल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि इन्फॉर्मेशन कितनी स्टोर, यू नो कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है बच्चे के बारे में एंड कब तक होगी, बिकॉज ऑनलाइन तो इट कुड बी फॉरएवर, लेकिन पहले जो ये सिस्टम था कि ऑन पेपर आपकी रिपोर्ट से आपकी आपके जो स्कूल वर्क आपने किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर रहती थी, लेकिन अब ये सब कुछ ऑनलाइन है. इवन होमवर्क भी होता है वो ऑनलाइन एप्स पे होता है, क्लासेस भी ऑनलाइन होती है. सो पेरेंट्स के पास डेफिनेटली राइट्स होते हैं कि आप स्कूल से कॉन्टेक्ट करें, उनको अप्रोच करें और इन्फॉर्मेशन लें.
0: सही. अच्छा रुमाना, स्कूल्स में आप क्या समझती हैं उनके करिकुलम में उनकी उसमें ऐड होना चाहिए कि बच्चों को अपनी ऑनलाइन सेफ्टी का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इसकी आप कितनी अहम जरूरत महसूस करती हैं?
1: जी इसमें ये जरूर बहुत जरूरी है. आई मीन इसमें काफी लोग जो है लेट ऑन स्कूल के बाद भी इसमें आप इसके ऊपर पूरे कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे साइबर क्राइम के ऊपर भी एक आप एजुकेशन ले सकते हैं. लेकिन आई थिंक इस टाइम इस स्टेज पे स्कूल की एजुकेशन में भी बहुत जरूरी है. स्कूल में सिखाना चाहिए कि अगर आप सोशल मीडिया यूज करें तो उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है एंड सेफ्टी कैसे रखनी है वो बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एप्स एंड यू नो सोशल मीडिया एप्स, इवन विद गेम्स कम्युनिकेशन एक्सटर्नल लोगों से आप कर सकते हैं. आपको पता होना चाहिए कि आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं.
0: आजकल जैसे गेम्स वगैरह बहुत ज्यादा हैं, तो पेरेंट्स डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इस टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, तो आप जरा उनको एडवाइस करेंगी कि वो किस तरीके से अपने बच्चों के उस गेमिंग डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कहाँ अपनी इंफॉर्मेशन अपनी लोकेशन वगैरह वो डिफरेंट जगहों पर शेयर करें, क्योंकि कुछ एप्स या कुछ गेम्स ऐसी हैं जो आपसे लोकेशन और आपकी इन्फॉर्मेशन मांगती हैं, तो क्या उन एप्स को या उन गेम्स को अवॉइड करना चाहिए, या अगर कर लें तो फिर उसके लिए क्या सेफ्टी कंसर्न्स होने चाहिए?
1: आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउडेज कि आप बच्चों को स्टॉप करें, बिकॉज अगर आप किसी भी गेम से या किसी भी ऐप से उनको स्टॉप करेंगे बच्चे दूसरे बच्चों को देख के देयर वांट इट एज वेल, सो उनको भी होगा कि हम भी मतलब ये गेम लें या डाउनलोड करें. बट आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली एप्स की जो सेटिंग्स होती हैं आपको उनको यूज करने से पहले उनको स्टडी करना चाहिए कि उनकी आप लोकेशन प्राइवेटाइज कैसे कर सकते हैं. अब हर ऐप में जरूरी नहीं कि आपने डेफिनेटली अपनी लोकेशन देनी है, एंड अगर आप नाम भी दे रहे हैं बच्चे का देन वो भी आप चेंज कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू हैव द एक्चुअल नेम.
0: एक्जैक्टली
1: जो सेटिंग्स में होता है वो डेफिनेटली पेरेंट्स को प्रॉपरली चेक करना चाहिए, और अगर वो नहीं समझते देन यू कैन गेट आप एडवाइस ले सकते हैं लोगों से, एक्सटर्नल एडवाइस इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि ऐप के ऊपर यू नो एडवाइस करें कि इसको कैसे कंट्रोल करना है. कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको नहीं समझ आती या अंडरस्टैंड नहीं होता कि वो ऐप्स कैसे चलते हैं, बट डेफिनेटली लोकेशन जो है आप यू कैन हाइड इट, आप उसको पब्लिसाइज नहीं करें.
0: राइट. अच्छा रुमाना, बहुत इम्पॉर्टेंट आजकल की इस डिमांड बन चुकी है या ज़रूरत बन चुकी है चाहे पेरेंट्स की चाहे बच्चों की, एआई टूल्स. मैं किसी टूल का नाम नहीं लूंगी लेकिन हम एआई टूल्स की बात करते हैं, बहुत एजुकेट भी करते हैं लेकिन हमारा डाटा जो है वो वहाँ पे स्टोर भी हो रहा है, बच्चों की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपसे डेफिनेटली आप स्टोर करवा रहे हैं या कर रहे हैं, ये कितना ज़रूरी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बनती है, या इन टूल्स पे आप टोटली रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
1: Yeah, definitely I would not suggest के आप हर टूल के ऊपर रिलाई करें एंड यू कांट ट्रस्ट बिकॉज AI is such a you know large tool के everyone is using it.
0: Everyone, yes.
1: In a positive way or even like if someone's misusing it, you have to be very careful के आप अपने बच्चों की अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फोटोज आप किस तरह उसमें ऐड कर रहे हैं, उसको यूज करने का यही होता है ना कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने पिक्चर्स अपलोड करें, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप उनको क्या देना चाह रहे हैं. एंड ये होता है कि लोग फ्यूचर में मिस यूज कर सकते हैं स्पेशली बच्चों की पिक्चर्स.
0: बिल्कुल. और ये जो AI है डेफिनेटली इसमें इसने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट है, बहुत ज्यादा तरक्की इसने कर ली है, तो इसका जो है इसका सही मेरा ख्याल है नॉलेज होना हर पेरेंट के लिए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन भी और डॉक्टर एडवाइस भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप AI से ही पूछते हैं.